FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी

FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक

0: तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

जब मनुष्य के जीवन में कठिन समय आता है तो उसे अपनी समस्याओं को दूर करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। उस समय सभी संगी साथी भी उनकी सहायता करना छोड़ देते हैं। तब अंत में परमपिता परमेश्वर की शरण में मनुष्य जाता है और उन्हीं के चरणों में अपने मन का कष्ट अर्पित करता है, उनसे प्रार्थना करता है, क्योंकि वही एक सच्चे मार्गदर्शक हैं। तो आइए उसी परमपिता परमात्मा का वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं।

प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो आइए उसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि वो हमें सही दिशा प्रदान करें।

संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसीलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें, सब शुभ होगा।

भजन का अर्थ है सेवा करना, ध्यान करना, पूजा करना, कीर्तन करना, अर्चना करना या फिर स्तुति करना। ये सभी भजन के अंग हैं। भजन साधारण मानव को सहज ही ईश्वर के भाव में डुबो देता है और मनुष्य बिना साधना, बिना तप और योग के ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है। ये भाव ही है जो ईश्वर को सर्वप्रिय है। वे भाव के ही भूखे हैं, अर्थात भजन ही भगवान का दूसरा रूप है।

प्रभु की सबसे अच्छी प्रार्थना तब होती है जब हम प्रभु की इच्छा के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। प्रार्थना के समय मनुष्य का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, बल्कि मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है।

भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना में आज आपने सुना हरिओम शरण जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, रविंद्र जैन और अनुराधा पौडवाल के स्वरों को। इसी के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना यहीं पर संपन्न होता है।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

बड़ी चतुराई से मंत्रानी रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्य कुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहाँ रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर थे ए हरिहरन, उत्तरा केलकर और मिताली सिंह के। आकाशवाणी कोटा की इस प्रस्तुति का संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आलोक में सुनिए वार्ता। विषय है सतपुरुष से संगति का महत्व। वार्ताकार हैं पंडित दामोदर शास्त्री।
1: दुनिया में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई अपने सत्कर्मों व सद्गुणों के कारण प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करते हैं, दूसरी ओर कुछ लोग अपने दुष्कर्मों के कारण निंदा व अपयश के भागी होते हैं। सद्गुणों व सत्पुरुषों का सभी जगह आदर होता है और दुर्गुणों व दुर्जनों की सब जगह निंदा। सत्पुरुषों के संसर्ग में आकर जहाँ व्यक्ति को मन की शांति मिलती है, वहाँ दुर्जनों के संसर्ग से अशांति। इसीलिए सत्पुरुषों की संगति का महत्व शास्त्रों में जगह जगह गाया गया है। महान नीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है, संसार कटुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितंच सुस्वादु संगति सुजने जने। इस संसार रूपी वृक्ष में सभी फल कड़वे होते हैं, किंतु दो ही फल उसमें ऐसे लगते हैं जो अमृत जैसे मीठे होते हैं। एक तो मीठी वाणी और दूसरा सत्पुरुषों की संगति। वास्तव में सत्पुरुष चलते फिरते सद्ज्ञान की पाठशाला है। उनके संसर्ग में जो भी आता है उसमें सद्गुणों का विकास स्वतः प्रारंभ हो जाता है। जैनाचार्य रविशेन ने पद्म पुराण में सत्संगति का महात्म्य इस प्रकार बताया है, साधो संगमना आलोके न किंचित दुर्लभम भवेत बहुजन्मसु न प्राप्ता बोधिर्येनाधिगम्यते। अर्थात सत्पुरुषों की संगति से दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त न हो सके, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति को भी सत्पुरुषों की संगति से सज्ञान का प्रकाश मिलता है, जिसके आधार पर वह सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। महामनीषी भर्तृहरि ने भी बड़े ही सुंदर ढंग से सत्संगति के लाभों पर इस प्रकार प्रकाश डाला है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। गति से मनुष्य की बुद्धि प्रखर होती है, सत्य बोलने का गुण विकसित होता है।
0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आलोक में वार्ता। विषय था सत्पुरुष से संगति का महत्व। वार्ताकार थे पंडित दामोदर शास्त्री। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रस्तुत होगा हमारा कार्यक्रमों का विवरण, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुन

0: आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पीव जी, ओ ढोला जी, ओ पीव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: १९२७ से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।
2: हम आकाशवाणी कोटाबूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे 7 बजे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत सदाबहार गीत। आठ बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम और 8:30 पर आप आनंद लेंगे सुगम संगीत का। नौ बजे होंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 पर फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे। 9:30 पर बच्चों का होगा कार्यक्रम बाल संसार। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मेहनती बनो और बच्चों से आप सुनेंगे बाल गीत और कहानी। 5:00 आप सुनेंगे विविधा। आज के इस कार्यक्रम में होगी परिचर्चा, विषय होगा सांपों से डरे नहीं, बचाओ व संरक्षण करें। 5:30 पर आप सुनेंगे वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। 6:00 होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:05 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 7:00 किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा इस पखवाड़े

के कृषि कार्य, साथ ही चर्चा होगी सामाजिक वानिकी पर, जानकारी होगी होगी नवीन कृषि सूचनाएं और मौसम जानकारी। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण मैच की समाप्ति तक। आठ बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो ये थे आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाषनिर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि

0: की महाशक्तित्वेन विकास यात्रायाम् एषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्तमासस्य 23-10 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: FM 102 FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7 बजे का समय है। लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

श्रोताओं, कभी किसी पंछी को देखकर उड़ने की चाह हो तो ये मत सोचना कि हम उड़ नहीं सकते। अगर पंछी के पास उड़ने के लिए पंख हैं, तो आपके पास भी हर रोज एक नई सुबह है। जी हाँ, हर सुबह एक नया अवसर है अपने सपनों को पूरा करने का, ऊंचे आसमान में उड़ान भरने का, खुद को बेहतर बनाने का। तो इसी खूबसूरत सुबह की हमारी जानकारी और मनोरंजन से भरपूर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्रेरक विचार के साथ। तो सुनिए आज का विचार कि विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक आपकी व्यवहार में दिखे, क्योंकि अच्छी सोच, अच्छे विचार मन को हमेशा प्रसन्न रखते हैं। अच्छे विचार आपको जिंदगी में आपके भविष्य को बनाने में मदद करते हैं। तो इस जिंदगी में ताल से ताल मिलाते चलो, विचारों से विचारों को मिलाते चलो, फिर देखो आपकी ये जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। तो बने रहिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ, नमस्कार कोटा में। सुनिए ये मधुर संगीत और पहली पेशकश।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे परिधानों के बारे में, यानी कि भारतीय परिधान जो हमारी सभ्यता, संस्कार और मूल्यों का प्रतिबिंब है। श्रोताओं, परिधान जो होते हैं, जिन्हें हम पहनावा भी कहते हैं, ये ऐसे वस्त्र होते हैं जिन्हें शरीर पर पहना जाता है। हमारे परिधान पहनावा केवल शरीर को ढकने या फिर मौसम से बचाने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी प्राचीन सभ्यता, क्षेत्रीय विविधता और गौरवशाली संस्कृति का एक दर्पण है। भारत जैसे विविधताओं से भरे इस देश में यहाँ के पारंपरिक परिधान हमारी पहचान का विश्व स्तर पर एक अनूठी और सम्मानित छवि प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है और इस संस्कृति का एक प्रमुख और जीवंत हिस्सा जो है वो हमारे परिधान है। श्रोताओं, आपको बताएं कि भारत के हर कोने में पहनावे की अपनी एक अलग शैली है जो वहां के जलवायु, भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार विकसित हुई है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो यहाँ की साड़ियाँ जैसे बनारसी, लहंगा, चोली और पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, धोती लोकप्रिय है। राजस्थान और गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ के परिधानों में चमकीले रंग, बंधेज, लहरिया और कढ़ाई का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में कांजीवरम साड़ियां, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले धोती शर्ट अपनी सादगी और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर भारत में यहाँ की जनजातियों के द्वारा अपने हाथों से बुने गए पारंपरिक वस्त्र उनकी कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। हमारे परिधान हमारे संस्कारों और सामाजिक मूल्यों को भी दर्शाते हैं। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में शालीनता और सभ्यता का विशेष महत्व है। धोती, कुर्ता या साड़ी जैसे परिधान हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं।

पारिवारिक एवं धार्मिक आयोजनों से हमारी आस्था को ये प्रकट भी करते हैं। त्योहार की बात हो या शादी की बात हो, विवाह जैसे विशेष अवसरों पर पारंपरिक वस्त्र पहनना हमारी परंपरा का मुख्य अंग है। श्रोताओ, आज के इस आधुनिक युग और वैश्वीकरण के दौर में हमारी वेशभूषा में काफी बदलाव आया है। दैनिक जीवन में उन्हीं वस्त्रों को हम आरामदायक मानते हैं, लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में भी लोग जो हैं और बच्चे युवा सिर्फ वही वस्त्र पहनना पसंद करते हैं जो हमारी संस्कृति को और सभ्यता को, भारत की पहचान को जीवंत रखता है।

हमारे परिधान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। वे केवल फैशन नहीं बल्कि हमारे देश की एकता में अनेकता की भावना का प्रतीक है। बदलते समय के साथ हमारे पहनावे में आधुनिकता का समावेश जरूर हुआ हो सकता हूँ, लेकिन हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है, जो सभ्यता है, वो आज भी हमारे परिधानों में सुरक्षित और जीवंत है और इन गौरवशाली पहनावों का हम सम्मान करते हैं। और ये जो सिर्फ सम्मान है वो हमारे इंडिया में ही देखने को मिलेगा, यानी कि ये सिर्फ इंडिया में ही होता है।

जी हाँ, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। श्रोताओं, जिस तरह से हम मौसम के अनुसार अपने वस्त्रों का, अपने पहनावे का चयन करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने खान पान का चयन भी मौसम के अनुरूप ही करना चाहिए, क्योंकि शरीर पर खान पान के अलावा मौसम और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। किसी एक मौसम की अगर बात करें तो वो दोष बढ़ाता है, तो कोई दूसरा जो है वो शांत होता है। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि आपकी सेहत और मौसम का एक गहरा संबंध है। अभी जो बारिश का मौसम है वो शुरू होने वाला है। इस वातावरण में आसपास गंदगी फैल जाती है, इसी वजह से मच्छर मक्खियाँ काफ़ी बढ़ जाती है और संक्रमण का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। नमी की वजह से वात दोष असंतुलित हो जाता है और पाचन शक्ति जो होती है हमारी वो कमज़ोर हो जाती है। इस ऋतु में आपको हल्के, सुपाच्य, ताजी और गर्म भोजन का सेवन करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो वात को शांत करे। इस मौसम में दालों का सेवन अत्यधिक करें। सब्जियों में लौकी, भिंडी, तुरई, टमाटर और पुदीने को शामिल करें। और फलों की बात करें तो मौसमी फल, सेब, केला, पके हुए जामुन और देशी आम खाएं। इस मौसम में आम और दूध का सेवन एक साथ करना भी लाभकारी माना जाता है। पानी को छान करके पिए।

उबाल करके ठंडा करके पिए। भारी भोजन ना करें, गीले कपड़ों को पहनने से बचें और भोजन जो है वो समय पर करें। रात्रि की नींद अवश्य लें, योग प्राणायाम करें। बारिश में अगर आप भीग गए हैं तो तुरंत कपड़े बदलें। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। रात के समय में दही का प्रयोग ना करें, यानी कि दही का सेवन करने से बचें।

आइए श्रोताओं, अब नमस्कार कोटा कार्यक्रम में आपको जानकारी देते हैं आज के सूर्यास्त और कल के होने वाले सूर्योदय के बारे में। आज सूर्यास्त होगा शाम 5:07 पर और कल सूर्योदय होगा सुबह 5:41 पर। तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस।

ले जो श्रोताओं, विद्यार्थियों के लिए एक सूचना, प्री पीजी परीक्षा 12 को 7 से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र, यानी कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में MVSC और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्री पीजी परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित होगी।

ये परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित होगी और परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हैं वो 7 जुलाई से डाउनलोड किए जा सकेंगे और जबकि परिणाम 20 जुलाई को घोषित किया जाएगा।

रेलवे संबंधित सूचना। ललितपुर यार्ड रिमॉडलिंग का असर चार विशेष ट्रेनों का मार्ग बदलेगा। उत्तर मध्य रेलवे के ललितपुर जंक्शन स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक का असर रेल संचालन पर पड़ा है और इसके लिए विशेष ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से परिवर्तित किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया है कि गाड़ी संख्या 09065 09066 सूरत छपरा सूरत अहमदाबाद दरभंगा अहमदाबाद विशेष ट्रेनें निर्धारित मार्ग के बजाय कोटा और सवाई माधोपुर होकर के संचालित होगी।

साथ ही आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार शहर में आज रविवार को लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती का आयोजन होगा। दो पारियों में ये परीक्षा आयोजित होगी।

रेलवे संबंधित एक और जानकारी। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए 234 दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया है कि अप्रैल में 99, मई में 39 और जून में 96 कार्ड उन्होंने जारी किए और इससे भारतीय रेलवे दृष्टिहीन, श्रवण और वाणी बाधित, मानसिक रूप से अस्वस्थ और

शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों को 25 से 75% तक किराए में छूट प्रदान करती है। यदि दिव्यांग यात्री के साथ कोई एक्सकोट यात्रा करता है तो उसे भी समान रियायत का लाभ मिलता है। ये सुविधा टिकट काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग दोनों माध्यम से उपलब्ध है। वहीं इच्छुक यात्री जिला अस्पताल का दिव्यांग प्रमाण पत्र, रेलवे रियायत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट कार्ड का जो फोटो है वो अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

तो श्रोताओं, ये थे स्थानीय सूचनाएं। और अब आपको बताएं कि हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य ही मनुष्य का जो है सबसे बड़ा धन है, जिसे सही दिनचर्या और आदतों से सुखी बनाया जा सकता है। और अब वक्त हो चला है नमस्कार कोटक कार्यक्रम में आपसे अनुमति लेने का। इस कार्यक्रम का संयोजन था तेजराम मीणा का, सह सहयोग रहा राजेश महावर का। अब दीजिए आपकी रेडियो हम सफर निशा को अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 7:30 का समय है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत सदाबहार गीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सदाबहार गीतों के सुरीली पेशकश में पहला गीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में एक गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना थी समीर की, संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम था साजन की बाहों में। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाज में।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत सदाबहार गीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। शब्द रचना है समीर की, संगीत आनंद मिलिंद का। फिल्म का नाम अनाड़ी।

प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत सदाबहार गीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पीसू नंदा और कुमार सानू की आवाज में। शब्द रचना समीर की, संगीत है नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम संग्राम।

जन संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत सदाबहार गीत में सुनिए अंतिम गीत।

अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक के स्वर में, शब्द रचना है समीर की, संगीत नदीम शमन का, फिल्म का नाम आदमी खिलौना है।

अलका याग्निक द्वारा गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत सदाबहार गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे

अलका याग्निक द्वारा गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत सदाबहार गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार

0: विचार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस।

0: करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की

0: ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, लोक संगीत में सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा के स्वर में।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला लोकगीत समंदर खान के स्वर में।

समंदर खान द्वारा गाए इसी लोक संगीत के द्वारा अब यहीं लोक संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है और हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए सुगम संगीत।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुगम संगीत आप सुन रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगली गजल आशा भोंसले के स्वर में। शब्द रचना है अहमद फराज की और संगीत गुलाम अली का।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए श्रोताओं सुनिए अगली गजल। अगली गजल आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली के स्वर में।

आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगली गजल जगजीत सिंह के स्वर में।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पीव जी, ओ ढोला जी, ओ पीव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज़ ऑन ए

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए श्रोताओं, सुगम संगीत में सुनिए अब अंतिम गजल। अंतिम गजल आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह के स्वर में।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह द्वारा गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की। और प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में हर वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: गौरतलब है कि यह भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है। इससे पहले 28 फरवरी को पहला और 31 मार्च को दूसरा प्लांट शुरू हुआ था। कैबिनेट में 12 प्लांट स्वीकृत किए गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान इस योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट के साथ शुरू की गई ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना साकार होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। बालोतरा में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हुए सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कल उदयपुर शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जा रही देवास पेयजल परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माणाधीन टनल और बांध कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल निर्माण स्थल पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण

0: संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। उदयपुर के भविष्य की जल सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से उदयपुर शहर को लंबे समय तक स्वच्छ और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा। साथ ही पिछोला, फतह सागर झीलों के जलस्तर को बनाए रखने में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इससे प्याज की खेती करने वाले किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। मंत्रालय ने बताया कि देश में प्याज का पर्याप्त स्टॉक है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम जनित बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर हैं। डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें आमजन को जागरूक करने के साथ ही अस्पतालों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि यहां जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर पहुंचकर लार्वा सर्वे और जन जागरूक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
1: जिले में जुलाई माह को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया जा रहा है। जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू नियंत्रण और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पानी की टंकियों, कूलरों, ड्रमों, गमलों, फ्रिज की ट्रे, पुराने टायर और अन्य जला भराव वाले स्थानों की जांच कर लार्वा नष्ट कर रहे हैं। साथ ही आमजन को स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा नहीं होने देने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। बाकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक अब पश्चिमी जिलों तक पहुंच रही है। कल बाड़मेर के चौहटन और गडरा रोड इलाके में तेज बरसात हुई। इसके अलावा बायतू, रामसर और धनाऊ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात होने के समाचार हैं। जैसलमेर में हुई तेज बरसात से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 4-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की चेतावनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा का पहला चरण सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र और वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाने तथा परीक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की।

0: और प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। 9:10 का समय है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत से पहली पेशकश फिल्म जन्नत से। केके की आवाज है, शब्द रचना है सईद कादरी की, संगीत प्रीतम का।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और के केश्वर में, शब्द रचना है जलीश शेरवानी की, संगीत साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम द किलर।

आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए श्रोताओं सुनिए अगला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गैंगस्टर फिल्म से, जिसे गाया है के ने और शब्द रचना है सईद कादरी की, संगीत प्रीतम का।

केके की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत से सुनिए अंतिम गीत। अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं सोहम की आवाज में। शब्द रचना है सैयद कादरी की, संगीत दिया है संदीप श्रीवास्तव, अमिताभ वर्मा और प्रीतम ने। फिल्म का नाम लाइफ इन अ मेट्रो।

सोहम द्वारा गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 9:30 का समय है। अब बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम बाल संसार।

0: बोलो बच्चों, जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: छुट्टियां खत्म हुई, खुले हैं स्कूल। बच्चों, गृह कार्य करना तो नहीं गए भूल? कुछ याद किया, कुछ नया पढ़ा, या केवल तुमने घूमा फिरा? अब फिर सारे दोस्त मिल जाएंगे, अपनी छुट्टियों की कथा सुनाएंगे, अपनी छुट्टियों की कथा सुनाएंगे। और सुनने सुनाने वाले प्यारे से आपके अपने बाल संसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज है मोनिका दीदी का साथ, और साथ में ज्ञान और मनोरंजन का धमाल। चुपचाप बैठना, रेडियो सेट के पास बातें नहीं करना, और दीदी के सवालों के जवाब भी देना, ठीक है? क्योंकि अगर सुनोगे ध्यान से कार्यक्रम, तो होगा मनोरंजन के साथ ज्ञान का आगम। साथ ही आप सभी को मोनिका दीदी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे बाल मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और देर ना करते हुए, आपको बहुत देर से इंतजार है ना आपके प्यारे मनपसंद कार्यक्रम का, तो देर ना करते हुए मनोरंजन की बारिश की जाए, जिससे कि यह रविवार भी खास बन जाए।
0: प्यारे बाल साथियों, आज हमारे साथ हैं प्यारे प्यारे दो नन्हे मेहमान, और करते हैं उनसे प्यारी प्यारी बातें और सुनते हैं उनकी मनहारी प्रस्तुतियाँ। बेटा, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम परी है।
0: और परी कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
3: मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: और परी को क्या करना पसंद है? आपकी हॉबीज क्या हैं?
3: मुझे डांस करना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, और नई नई कविताएं सुनना।
0: क्या बात है परी, आपकी तो बहुत अच्छी अच्छी हॉबीज हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
3: मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ।
0: क्यों बनना चाहते हो टीचर?
3: मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी छोटी बहन पढ़ाती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, तो जितना ज्ञान का प्रसार करें उतना ज्ञान बढ़ता है ना? तो परी, यह बताइए, आप अपने बाल साथियों को क्या सुनाना चाहती हो?
3: मैं अपने बाल साथियों को एक प्रार्थना सुनाना चाहती, जो मैं पढ़ने से पहले करती हूँ।
0: अच्छा, आपको पता है प्रार्थना करने से क्या होता है?
3: मन को शांति मिलती है और पढ़ाई में मन लगा रहता है।
0: बिल्कुल सही, ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। बहुत अच्छी बात बताई है, तो आपने सुनाओ अपनी प्रार्थना।
3: हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर्ण की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, इशारते माँ, इशारते माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी, हम भी समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ, इशारते माँ, इशारते माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू शेरवर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हमारे मिटा दे अंधे हमको उजाड़ का संसार दे माँ, इशारती माँ, इशारती माँ।
0: बहुत ही प्यारी आपने प्रार्थना सुनाई है, और बिल्कुल इस प्रार्थना को करने से मन को

0: शांति भी मिलती है और पढ़ाई में मन भी लगता है। तो हमारे बाल साथियों को प्रार्थना जरूर करना चाहिए। और परी, आप क्या सुनाना चाहती हो?
1: मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती
0: हूँ। इसका शीर्षक क्या है?
1: जंगल में ओलंपिक।
0: क्या बात है, इसका शीर्षक ही इतना अच्छा है कि सभी उत्सुक हो रहे हैं आपकी कविता सुनने के लिए। तो सुनाइए।
1: जंगल में ओलंपिक का भीड़ भड़क का भारी, जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। पशु पक्षी सब मस्त मगन, खेल हो गया चालू। गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है बालू। गर्दब जी ने डिस्क फेंक जीत लिए दो मेडल। 100 मीटर की दौड़ हो भाग रहे दल के दल। तैराकी उद बिलाव जी निकले सबसे आगे। कुश्ती में मैदान छोड़ गेंडा जी झट भागे। रीच वेट लिफ्टिंग में चूका स्वर्ण ले गया चीता। मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार जीता। 100 क्विंटल का वजन सुन हाथी ने उठाया। 12 सिंह ने उसको आसमान पे बिठाया। लंबी ऊंची कूद हिरन के हिस्से में है आई। सभी जानवर आगे आख देने लगे बताई। 10 दिन के इस ओलंपिक सिंहराज है निर्णायक। उंगली कहीं नहीं उठे सब पाएंगे अपना हक। बगुले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा। मार ले स्वर्ण पदक आई न कोई बाधा।
0: क्या बात क्या बात क्या बात, तालियां तो बनती हैं। बहुत ही प्यारी आपने कविता सुनाई है, जंगल में ओलंपिक। और ऐसा लग रहा था सचमुच हमारे सामने एक ओलंपिक चल रहा है, कहीं कुश्ती हो रही है, मुक्केबाजी हो रही है। बहुत ही प्यारी आपकी कविता लगी हमको परी। और परी, और क्या सुनाना चाहती हो आप?
1: मैं कहानी भी सुनाना चाहती हूँ।
0: आपको कहानी सुनना और सुनाना बहुत पसंद है?
1: हाँ, मुझे कहानी सुनना और सुनाना बहुत पसंद है।
0: तो आप किससे सुनते हो कहानी?
1: मैं अपनी दादी से कहानी सुनती हूँ।
0: अच्छा, तो आज आप यह बता सकते हो कि आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
1: हाँ जरूर, मेरी कहानी का शीर्षक कोयल हो गई काली।
0: क्या बात है, तो सुनाओ अपनी कहानी।
1: बहुत पुरानी बात है, गंगा नदी किनारे घना जंगल था। तरह तरह के रंग बिरंग पक्षियों की चहचहाट से जंगल गूंजता रहता था। सब पक्षियों की सरदार एक सुनहरी चिड़िया, इसे चिड़िया कर सोने जैसा था। मानो सुनहरे पंखों वाली कोई परी हो। जब वह नीले आसमान पे अपनी सुनहरे पंख फैला उड़ती थी, तब जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर मुग्ध होकर उसे देखते रह जाते थे। वह जंगल की शान थी, उसके रूप रंग और चमकीली आंखों की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। इतना ज्यादा लाड़ पाकर सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझने लगी थी। सब उसे प्यार से सोनल कहकर पुकारते थे। सोनल किसी से सीधे बात नहीं करती थी। जब चाहे वह नीले आसमान में अपनी मनमानी करते हुए लंबी उड़ान भरा करती थी। एक बार अपनी सुंदरता के घमंड में उड़ती हुई वह आकाश में बहुत ऊंचाई पे चली गई। उड़ते उड़ते उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि बहुत ऊंचाई पर आ गई। उसके मन में और ऊंचा, बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा उड़ने की लालसा थी। अचानक वह जोश चीखी, उई माँ बचाओ। सूरज की गर्मी सोनल को जला डाला। उसका सुनहरा शरीर झुलस गया, उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए। रोती चीखती चिल्लाती दर्द से झटपटा थी। वह एक बूढ़े बरगद की टहनी पर जा गिरी। बूढ़े बरगद ने उसे प्यार से सहलाया, उसकी सेवा की। कुछ दिनों के बाद ठीक हो गई, पर वह बहुत उदास रहने क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। उसे गुमसुम थे।

0: कर बूढ़े बरगद बाबा ने उसे समझाया, इस दुनिया में रंग रूप का कोई महत्व नहीं, लोगों की पहचान गुणों से होती है, रूप से नहीं। अगर तुम सभी के साथ मिलजुल कर रहोगी, सभी से मीठी बोल बोलोगी, तो काली होने पर भी सब तुम्हें प्यार करेंगे। तभी से सोनल ने मीठी वाणी में गाना शुरू कर दिया और अपनी मीठी बोली से सबका मन, सभी उसे प्यार से कोयल बनाने लगे। धीरे धीरे सभी सोनल चिड़िया को भूल गए और कोयल के गुण गाने लगे। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य का बोध होना चाहिए।
1: बहुत अच्छी आपने कहानी सुनाई है और इस कहानी से सीख मिल रही है कि मीठी बोली बोलना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मेरे बहन साथियों, लड़ाई नहीं करना है, मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है, और कभी भी जब आपके अच्छे नंबर आते हैं या कुछ भी आप अच्छा करते हो तो घमंड नहीं करना है ना। कुछ अगर आपको आता है तो आपको दूसरे बच्चों को इसको सिखाना है, ठीक है बच्चों?
2: हाँ दीदी।
3: प्रस्तुतियों को यहीं देते हैं विराम और बताते हैं आपको एक बहुत अच्छी बात, ठीक है? बाल साथियों, सभी ने अपना होमवर्क समय पर किया होगा, है ना? कुछ बच्चों का अधूरा रह गया क्योंकि आलस आ गया था, है ना? देखो बच्चों, आलस छोड़कर अगर आप अपना होमवर्क पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आपकी तारीफ होती है, और अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता और सम्मान अवश्य मिलेगा। बाल साथियों, हम सभी चाहते हैं हमारी जिंदगी में सफलता मिले और मेहनती बनना सफलता की कुंजी है। अपनी दिनचर्या में स्पष्ट लक्ष्य तय करें, छोटे कार्यों में बांटकर काम की शुरुआत करें और भटकाओ, समझ गए, यानी कि सोशल मीडिया से दूर रहें जितना हो सके, ठीक है ना? बच्चों, अभ्यास और निरंतरता एक ऐसा सफर है जो आपका हर दिन बेहतर बनाता है। मेहनती बनने की आदत ऐसी आदत है जो जीवन को बदल सकती है। जब आप किसी भी काम में ईमानदारी और लगन से मेहनत करते हो ना, तो सफलता आपके लिए नए रास्ते खोलती है। बच्चों, मेहनत करने से न सिर्फ आपके कौशल में निखार आता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आप निरंतर प्रयास करते हो तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, है ना, और अपने सपनों के पीछे डटे रहो। सभी बच्चों का सपना होता है, सभी का सपना होता है कुछ ना कुछ अच्छा करने का, तो इन सपनों के पीछे डटे रहो और मेहनत से एक दिन निश्चित ही आप अपनी मंजिल हासिल करोगे, ठीक है? तो मेरी बात ध्यान रखना। बच्चों, पालतू जानवर किस किस को पसंद है? हाँ, सभी को। कोई घर में तोता पालता है तो कोई कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कछुआ आदि। आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। पालतू जानवरों को प्रेम करें पर सुरक्षित रहें, ठीक है? बच्चों, पालतू जानवर हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अपन कितनी सारी बातें करते हैं उनसे, उनको खाना खिलाते हैं, उनको सहलाते हैं, कितना अच्छा लगता है। और बताऊं, तनाव भी दूर हो जाता है जब हम पालतू जानवरों से बातें करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। वे हमें खुशी देते हैं, है ना, और अपनापन भी देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मछली और पक्षी जैसे कई जानवर लोगों के प्रिय होते हैं, पालतू होते हैं। हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, उन्हें समय पर भोजन, स्वच्छ पानी और रहने के लिए साफ स्थान देना चाहिए। उनके साथ खेलना अच्छा होता है, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, है ना? जानवरों को छूने या उनके साथ खेलने के बाद हमेशा साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। बीमार या गुस्से में दिख रहे जानवरों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, है ना, नहीं तो आपको क्षति पहुंचाएंगे, आपको काट लेंगे, खरोंच देंगे। और अगर जानवर काट लेंगे, खरोंच देंगे, तो क्या करना चाहिए? तुरंत घर के बड़ों को बताएं, जिससे कि वह आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और कुछ बच्चे तो बेवजह जानवरों को छेड़ते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं, है ना, उन्हें

0: परेशान करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पालतू जानवरों का समय समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच करवाना भी आवश्यक होता है बच्चों। उनके रहने की जगह और खाने पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए। यदि हम जानवरों के साथ साथ स्वच्छता और सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे ना, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, पालतू जानवर से प्यार करें, उनकी देखभाल करें और सुरक्षित रहकर उनके साथ खुशहाल जीवन बिताएं। और जो बच्चे उनको परेशान करते हैं उनको भी समझाएं। तो कैसी लगी जानकारी? आप सभी को बताना है ना बच्चों, आपके दोस्तों को भी और आपके घर के लोगों को भी, पास पड़ोसियों को भी, ठीक है?
1: हाँ दीदी।
2: दीदी मेरी बहन भी मेरे साथ है, वो आपको कुछ सुनाना चाहती है।
3: क्या बात है, तो बेटा आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम काव्या है।
3: काव्या कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
4: मैं थर्ड क्लास में पढ़ती हूँ।
3: और काव्या को करना क्या पसंद है, क्या हॉबीज है आपकी?
4: मेरे को बातें करना पसंद, डांस करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है।
3: क्या बात है, आपको बातें करना पसंद है, ये तो बहुत अलग ही आपने हॉबीज बताई है कि बातें करना पसंद है। तो किस तरह की बातें करते हो आप?
4: घर के सारे बड़े मेरे से बहुत बातें करते हैं,
3: इसीलिए आपको इतनी सारी बातें करना आती है, है ना?
4: हाँ।
3: तो आप अपने बाल साथियों को क्या सुनाना चाहती हो?
4: मैं मेरे बाल साथियों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
3: इसका शीर्षक क्या है?
4: चिड़िया का संसार।
3: सुनाओ।
4: सबसे पहले मेरे घर का अंडा जैसा था आका, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जोश सुकुमा, तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसा, तब समझ मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार।
3: बहुत ही प्यारी आपने कविता सुनाई है काव्या, और सच में अभी तो आप छोटे हो तो आपको संसार छोटा लगता होगा, है ना, इतनी सी दुनिया है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको संसार बड़ा नजर आता है। काव्या यह बताओ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
4: मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
3: क्या बात है, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करना पड़ती है, पता है आपको?
4: हाँ पता है।
3: तो आप करते हो?
4: हाँ दीदी। दीदी मैं आपसे पैर यह पूछना चाहती हूँ। क्या मैं पूछूँ? बिना तेल के चलता है, पैर बिना वो चलता है, उजाले लो बिखेर कर अंधेरे को दूर करता है, बताओ क्या?
3: इसका उत्तर तो सूरज है, सही है?
4: बिल्कुल सही दीदी। जितनी ज्यादा सेवा करता उतना घटता जाता है, सभी रंग का नीला पीला पानी के संग बहता वो, बताओ क्या?
2: दीदी मुझे पता है इसका उत्तर।
3: अच्छा क्या है बताओ?
2: साबुन।
3: बिल्कुल सही, सही है ना काव्या?
4: हाँ दीदी। ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदते समय हरी होती है लेकिन उपयोग करने के बाद लाल रंग की हो जाती है?
3: इसका उत्तर मुझे बताए, मेहंदी होती है वो तो।
4: बिल्कुल सही जवाब दीदी।
3: बहुत ही अच्छी पहेलियाँ पूछी आपने, तो सरल थी जिसके उत्तर हम सबको आते थे। आगे बड़े होकर आप टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो आप बने, कड़ी मेहनत करें, मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है ना?
1: हाँ दीदी, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
5: दीदी दीदी दीदी हमें बालगीत सुनाएं।
0: ठीक है, ले चलते हैं बालगीतों की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको प्यारा सा बालगीत।

बच्चों मनोरंजन के पड़ाव को थोड़ा सा विराम देते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं और फिर आपके ज्ञान में वर्धन करते हैं, आपके ज्ञान का दीप जलाते हैं। एक प्यारी सी जानकारी देके बच्चों, देखो बच्चों, जूनोसिस रोग ऐसे रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवियों के कारण हो सकते हैं। पालतू या जंगली जानवरों के संपर्क में आने, उनके काटने, खरोंच लगने या दूषित भोजन और पानी के सेवन से ये रोग फैल सकते हैं। कारण पता पड़ गया ना आपको जूनोसिस रोग फैलने का। और देखो बच्चों, रेबीज, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है, याद रखना इसे। बच्चों इन रोगों से बचने के लिए हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी जानवर को छूने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने

0: चाहिए, बीमार या आवारा जानवरों से दूर रहना चाहिए। यदि किसी जानवर के काटने या खरोंच लगने की घटना हो जाए तो तुरंत घर के बड़ों को बताना चाहिए और डॉक्टर से उपचार करवाना चाहिए। भोजन हमेशा ताजा और अच्छी तरह पका हुआ खाना चाहिए, है ना, तथा स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। यदि हम स्वच्छता के नियमों का पालन करेंगे बच्चों, जानवरों के साथ सावधानी बरतेंगे और समय समय पर आवश्यक टीकाकरण करवाएंगे तो जूनोसिस रोगों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। देखो बच्चों, जागरूकता और सावधानी ही इन रोगों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। तो ठीक है, मोनिका दीदी की बात याद रखना और सभी को बताना, ठीक है। प्यारे नन्हे मेहमानों, आपकी प्रस्तुतियाँ मनहारी थीं और हमारे बाल श्रोताओं को भी मन को भाने वाली थीं। इन पंक्तियों के साथ, मेहनत से जो नाता जोड़ता है वही सफलता की राह मोड़ता है। मेहनती बनो, ऊंचा नाम कमाओ, अपने सपनों को सच बनाओ। सपने तो सब देखते हैं, है ना। और हमारे कोटा आकाशवाणी का चंबल चैनल की सभी की तरफ से आपको शुभकामनाएं रहती हैं कि आपके सपने सच हों। इसीलिए आपको बाल संसार का मंच प्रदान किया जाता है, जिसमें आपको मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम मिलता है सुनने के लिए और जानकारियों का भंडार, है ना। और सपनों को सच करने में साथ देता है आपका अपना बाल संसार कार्यक्रम, जिसमें ज्ञान भी है, मनोरंजन भी है। इस कार्यक्रम में हमें रहेगा आपकी बाल पातियों का इंतजार। तो नोट कीजिए हमारा पता, जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम बाल संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कोटा। हमारा पिन कोड है 3240001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9530001200, जिस पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल एड्रेस है enjoyenjoyairkota@gmail.com। तो दीजिए मोनिका दीदी को अनुमति, फिर होंगी बातें ज्ञान भरी। बोलो बच्चों, जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल संसार।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: अभी बच्चे सुन रहे थे कार्यक्रम बाल संसार, हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं।
5: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
6: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी थोड़ी सी ना जा दे।
5: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: अंतिम भाग।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
2: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
1: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव
2: जी,
1: आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
2: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ।
1: हाँ।
2: और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
1: हाँ हाँ।
2: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
1: बिल्कुल।
2: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
1: हाँ।
2: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है क्योंकि दोनों गाने वही थे।
1: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
2: नहीं,
1: थी कि चुनरिया पर ही आपको
2: नहीं,
1: गीत
2: नहीं। मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
1: आपस का
2: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है, और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग, तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है, मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो जगह ही रहता था, मतलब और फुल तैयार, बाजा रखो हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने, कि हाँ ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था, इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए, इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी

0: फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए लेकिन मैंने सीखा बहुत, और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूँ। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था। मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया। मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है लेकिन गाना मैं लिखूंगा। तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह।
0: तो इतने ग्रेट थे, वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो। देखिए रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे कभी भी बांद्रा, जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल,
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए हैं,
1: भूख
0: लगी होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत
0: खूब। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा।
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का। और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार विजू।
0: पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की।

0: लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलकी कह दिया तो डर जाते हैं, तो लकी सब में है ना।
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: अपन
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है, मेरा ठीक है,
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है
1: जी।
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा। मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेस को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था। तो ये इस गाने की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत गाना था
1: जी, और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बना,
0: और मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया। उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें ना जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है, मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा और हम लोग काम करेंगे
1: जी।
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
1: अच्छा।
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए, तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त।
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं
1: बहुत।
0: तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है।
0: फिर मैंने दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता, फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलते थे यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है, वो अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देरा जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है, उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: मैं आ जाऊंगा, वक्त दूंगा, वक्त दूंगा, तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला।

0: कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा, और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, उसमें कोई
1: बहुत बात बड़ी बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है आपने, और आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना, तो ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
0: ये मुझे भी नहीं पता, वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
1: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत है, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़े आपके गीतों को?
0: नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है उसको ले जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
1: अच्छा।
0: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
1: अच्छा।
0: हमने फायदा क्या इसका, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो गया अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
1: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल लिखवा
1: देते, सिचुएशन बतानी पड़ती है।
0: हाँ, जो भी सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में
0: मैं रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। एक दो बार की तो ठीक है, फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा।
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद किया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी।
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणे का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है, वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी।
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से।
0: ओडली अच्छा, यहाँ पर भी चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे।

0: तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
1: अच्छा।
0: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
1: जिनका जिक्र अभी आप
0: जिक्र किया। तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं।
1: अच्छा।
0: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए, और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कई बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूँ, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो है वो है।
1: जी, जी।
0: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या।
1: हाँ।
0: पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
1: अद्भुत,
0: ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा आप शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता, कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा।
1: हाँ, हाँ,
0: लेकिन मेरी औकात ही क्या, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
1: महानता देखिए आप,
0: लेकिन उनकी ग्रेटनेस देखिए। हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं, लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना।
1: जी जी।
0: लेकिन उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेना,
0: मैं कुछ नहीं लेना।
1: बहुत बड़ी बात सर।
0: तो ये बहुत बड़ी बात है,
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं।
0: एक गाना हम लोग सुनते हैं, मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो, मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत ये है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना,
0: नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा फिर? तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा? हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं।
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर,
0: और वो हो गया।
1: सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन बट AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नए नए तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार।

0: हूं तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोल्ड पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोर्ड पन्ने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी, जी।
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं मैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है।
1: बिल्कुल।
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही, तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस। काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल, मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया,
0: फिर 82 से 97 तक इंतजार किया
1: दूसरे गाने का।
0: नहीं, कोई गाना बाहर तो आए। 97 में गाना बाहर आया ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है
1: जी।
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ।
1: अच्छा।
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था, ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके उंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और बोलता है अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूं तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूं तब तक तू आ गया। वहां जल्दी आ अंदर।

0: अंदर अंदर गया, बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा, ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, तीन गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, वो चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो।
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ना कुछ
1: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपने जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी
1: जी।
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन सब से मैं मिला हूँ
1: जी। और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है

पंडित निखिल घोष का एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते। आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया
1: जी।
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी, जी,
0: रहे
1: जी।
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही और... बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है, आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती है जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई, और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नौरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ए मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी, और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे, और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पांव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहां पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सृजनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूँ। एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी। फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: हाँ।
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार, और
0: हाँ।
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की।
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई

0: जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की
1: जी,
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद किशोरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी,
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे
1: जी। 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत, और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

0: नेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
1: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोताओं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर

0: बता।
1: हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ धड़ धड़ धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं जो

0: अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सर करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉर्ट है फिल्म में,
1: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया।
0: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीजें प्लान थी, वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीजें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे,
1: बहुत लोकप्रिय गायक। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे, और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था, बहुत ही हिट था उन दिनों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे।
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था
0: जी।
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आम तौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं, उस तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है
0: जी।
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होने, इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा,
0: कामयाब होंगे
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके।
0: अच्छा।
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं, तो मैंने फिर भी काफी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले।
1: हाँ, बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो मुझे

0: मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग और फिल्म मर्द के लिए अमिताभ बच्चन।
1: अच्छा,
0: तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, कह रही ये तो कमाल ही हो गया। और मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया तो रिस्पॉन्स इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर
1: जिक्र करते,
0: हाँ, कि अरे फला एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अनु मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
1: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, तो कैसे मिला
0: था? तो कमाल है, आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा,
1: रहेंगे।
0: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं। क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
1: जी जी,
0: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशिलाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और इसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
1: अच्छा,
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कही है या रफी साहब की चाहत थी क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना
1: जी,
0: प्रिट नेम है, बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर, इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं, क्योंकि रोज का काम उनका,
1: जी, जी।
0: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया। वो
2: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया मोह

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व गाना जब बनता था ना तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी।
1: और हमको नमस्ते।

0: ते कहने नहीं देते, कभी पहले ही वो नमस्ते कहते लोगों को
1: जी,
0: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
1: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
0: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
1: जी,
0: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
1: जी, जी।
0: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ पूरा हो गया जी, बिल्कुल।
1: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था।
0: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एस डी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
1: जी,
0: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए लड़ जाई है ये सब
1: जी,
0: बिहार
1: जी।
0: का सिचुएशन देखकर
1: जी,
0: पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला। देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
1: अच्छा,
0: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर। और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा, इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी,
1: नात मन कवच जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी
0: जी
1: संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा सारा टाइटल भी आपने सुना होगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयां दोहे

0: जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
1: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
0: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए।
1: अच्छा,
0: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं
1: जी,
0: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो उसमें 4 सिंगर है। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था
1: जी।
0: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2,500 है और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
1: जी जी,
0: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे।
1: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
0: 17 या 18।
1: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
0: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है, क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस आएंगे विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को आपके मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदी हटा ली है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू

होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर

0: के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। बस कुछ नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मूज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके तहत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में लिवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जेनेटिक बनावट, पेट के आसपास चर्बी की अधिक समस्या और भारतीयों की खास शारीरिक बनावट के कारण लोगों में मधुमेह, फैटी लिवर और हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तरक्की के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव से इस

नई पहचान दिलाई। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजनबाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रौबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। इधर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय लोक कला में उनके उत्कृष्ट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। केंद्र सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटपूतली बहरोड़ के दौरे पर हैं। श्री यादव जिले की मुंडावर पंचायत समिति सहित विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने जाट बहरोड़ गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उनका रक्तदान शिविर के साथ ही जैतपुर में श्री श्याम मंदिर में नवनिर्मित श्याम कुंड उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। करौली में पांचना बांध के पानी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने कल संबंधित अधिकारियों के साथ बांध का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग की टीम ने नहरी तंत्र का तकनीकी परीक्षण भी किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी थी। प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून की बारिश का दौर बना हुआ है। सवाई माधोपुर में सुबह तेज बरसात हुई। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में भी हल्की बारिश के समाचार हैं। जैसलमेर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इससे पहले कल सीकर, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और अन्य जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक प्रदेश में मॉनसून गतिविधियां जारी रहने और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था, सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना, तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर, असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
1: डियर सर, सेवा में निवेदन है।

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कहने की आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है, वो जो आसमां मिला है, उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है, तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं, तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है। और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में, बता देंगे तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं भाई। लेकिन हमारी साथी कहती है कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते, न सपने, न लोग, न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ न मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे कौर साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर

0: पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है। जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाह जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है? बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

0: धनौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत, और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं, और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, क्या हमारे जीवन में हर चीज मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं है, या जिन चीजों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है, या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफर जीवन रंगमंच है। इसमें हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका पर मार्केट सुरीला सफर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीजों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो जरूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कहने कि नेहा जी इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीजें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नजरिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीजें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिला है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: हाँ,

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्ना डे, आशा भोसले, बत्तीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया। अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया। पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजन की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना। इस फॉर्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता। हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मानसून की पहली बरसात शुरू हुई और

लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है। इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे कॉल साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे कॉल साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे कॉल साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा। तो ये इनका कहना है। साथ ही कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा भाई, सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी एक और साथी कहती है कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अदद नौकरी की

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने के आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कहने की आज इतवार है, फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे और साथी कहने कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी, उनके फरमाइश की एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता, तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कहने कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कहने कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कहने कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी का देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत सच में लाजवाब है। सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने एक किस्सा लिख भेजा है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि चार हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि चार हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जरूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन जरूरतों को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया. फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना. के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक क्लिंटोन की आवाज में आपने ये गीत सुना. इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत. कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं. हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ. भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं. कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है. मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है. बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं. आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा. हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती हैं और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूं. भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है. इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं. तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं. हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं.

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री M.S. रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

बात सिर्फ वन महोत्सव की नहीं है। दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है, तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं?

त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई करती जाती है, इसकी भरपाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सच है कि तरक्की जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाएं, शहरों को एकदम सलीकेदार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हरियाली की कीमत पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

ये थी आज की त्रिवेणी, जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण

0: जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
3: ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर

0: मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।

0: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रूपये की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहू बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह

जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं। होशियार।

हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी हमसे मोहब्बत

0: होशियार जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार, होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार, हाय हाय जाने वाले।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मुश्किल कर। मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी की पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: श्री मोहन नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में।
4: जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है, और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे। कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई। और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए।
2: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
3: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजाति आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है, और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किया जाए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टॉप डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहाँ पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने

0: ऐसे 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके एक एक दो दो एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपके गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गाँव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारी गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। हमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं और आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रहकर के तो जंगल खत्म कर दिए, गाँव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के, कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहाँ होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गाँव में। और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क, सब गाँव गाँव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा ही गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी, उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवर हेड टैंक है, पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं, तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इस वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया, तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा। अवतरण था कि उसके

0: गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था केस द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा उतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी तो वो भी जल का संचयन कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तीन उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये तीन बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये तीनों बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके। उसके लिए हमारे घर पे की छत 1000 फुट के भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गाँव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गाँव का पानी गाँव में रुके। इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है, मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके, गाँव गाँव में तालाब बन रहे हैं, अमृत और बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके। फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर भी करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोनाघाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोनाघाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई, और उसके बाद फिर 32000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। तो ये काम समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है, चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ

0: किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है। शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के, और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखू जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव कमलेश रावी साहू हनी हिमांशु डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत राजे जाधव संचित वायात सर्वद देशमुख प्रथमेश देशमुख प्रणाली सानवी और कल्पना की आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति मनहर दास की आवाजें सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
3: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
2: कौन रानी हीरावती?
3: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गुंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
3: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
5: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
6: भला हम कौन होती हैं
5: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
6: चलो।
3: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
3: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
3: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आलीपुड़िका, हम चले यहाँ।
4: महाराज अनर्थ हो गया महाराज।
2: क्या हुआ?
4: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वलिका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
2: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
4: छोटी रानी ईरावती ने महाराज।
2: लगता है ईरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
4: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी ईरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
2: फिर क्या हुआ?
4: अब क्या होना था महाराज, मालूम

0: और बकला बलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। महाराज,
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज? निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया महाराज, मिल गया। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए।
2: मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने। बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए। वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
3: कहिए आज ये गौतम।
0: कान में सुनो।
4: जय हो हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
4: आज तो कुछ कम है देव।
5: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है। हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
6: महाराज मर गया। मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी, भागकर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
7: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
4: मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
6: फांसी का लम मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला न हो।
6: मेरा तो अन्नदा करता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
4: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
5: अरे गौतम, तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
6: महाराज, मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाते मेरे पास मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र? अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
7: महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा। इन्हें वहाँ ले जाना होगा महाराज।
1: तो संभाल कर इन्हें वहाँ ले जाओ।
7: देव की कैसी आज्ञा।
6: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुके हो वो क्षमा कीजिए।
4: नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
7: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलखत विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
4: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
7: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमद वन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? अरे गौतम, आज आप निकले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त कर।

0: ओह, यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
0: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
1: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्यगण, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
0: ये मैं फिर बताऊंगा बकलावल का। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढ कर वहीं ला।
2: जो आज्ञा।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
0: स्वामी की जय हो।
1: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में जी भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये छोटी रानी इरावती है।
0: ओ सखी,
1: महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
2: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
1: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
0: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
5: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरन चले जा रहा है। आ आ, उसे भगा ले, चल चले। महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
1: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे?
6: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
1: बेचारे को सांस निकाटा था, तो चल वहीं चलकर हम उसका हाल चाल जान ले। और
6: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
1: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
6: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही चक्कर क्यों नहीं मना लेती?
1: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया पर मैं रूठी ही रही।

0: देवी वो देखिए, आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रही हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ,
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
0: ये कृतघ्न बामन, ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक ब्राह्मण पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज रुकिए, उधर ना जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहां है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहां एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी इरावती,
1: सच्ची बकुलावलिका, ये कैसा है?
6: बकुलावलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया
2: तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया, पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर के सामने आके रहा।
4: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सेकी बकुलावलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
6: अच्छा तो ये सब इस ब्राह्मण के करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
3: देवी यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
6: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
7: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
8: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार से

0: भूषण विदिशापति महाराज अग्नि में
1: भ्रमर वन उत्सव में पधार रहे हैं।
2: जय हो विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
3: देवी सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
2: विराजे देव विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
3: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो आर्य पुत्र। फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
3: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
2: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
3: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
4: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
3: ले आओ।
4: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज प्रस्तुत हैं।
5: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
3: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
5: महाराज हम लोगों ने संगीत सीखा है।
3: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
2: मालविका आके देवी देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
5: अरे राजकुमारी आप यहाँ? जय हो राजकुमारी की जय हो।
2: अरे अरे मालविका राजकुमारी।
3: मालविका राजकुमारी?
5: हाँ महाराज ये हमारी राजकुमारी हैं।
3: कैसे?
5: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
2: ओह तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह चंदन से खड़ाऊ का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
3: भद्रे बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
5: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
3: फिर क्या हुआ?
5: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
6: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
3: भगवती आप?
5: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिकी जान पड़ती हैं।
6: हाँ वही है। प्रणाम भगवती।
5: कल्याण हो।
3: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
6: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
3: अच्छा अब कुछ बात समझ में आने लगी।
6: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बिगड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
7: मंत्री जी ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है, यहाँ तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
3: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
6: भैया आप भी तो?
3: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
7: अरे क्या हुआ? क्या हम लोग एक रुक क्यों गए?
8: जान जारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
7: वही हुआ ना जिसका भाई था,
8: डाकुओं
7: ने खेल दिया है।
8: चाहिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।
7: सैनिक ये करके खड़े हुए हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया

0: बहू का इधर आ रहे हैं। डाकू ने भैया को अकेले ही खेल दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़ो। हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूट कर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी यह इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
5: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी रात का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
5: ओह, मेरा जीव इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ। फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
5: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
5: जय सेन।
4: आज्ञा देवी।
5: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था। हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, ये कोई विघ्न न डाले।
4: देवी की कैसी आज्ञा।
5: मालविका, इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में ये प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
6: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजाए करते हैं।

0: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहाँ चलते हैं जहाँ अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहाँ तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा

0: आयस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो

0: नहीं, जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता.
1: ओके.
0: तो इस तरह से उन्होंने वो किया था.
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं. इट वॉज अ चैलेंज. जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट. तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था. और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी. और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे. वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे, तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था. और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा. और वो उन्होंने बखूबी निभाया था. उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी. लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे. उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं, मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता. तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं, तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव. फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है, तभी जाके फिल्म अलग बनती है.
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है.
0: एग्जैक्टली. वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में. इसलिए ये बहुत जरूरी था. और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है, इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे. हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था. लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है. अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं. कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी. लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे.
1: यहाँ गाना सुनते हैं.

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था पापा जो प्लेज वगैरह करते थे बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है आज भी है तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है बहू पैसे कमा रही है बेटा नाटक वगैरह करता है इससे थोड़ी ना घर चलेगा ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो शो हो तो बिल्कुल नहीं जाते थे लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है ये करता है वो करता है तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूँ देखता हूँ दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे तो वो रुके रहे वहां पर और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से नाचा ची काम कराई जा तुला इस तरह के काम करोगे तुम हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा पर तब तक काफी पानी बह चुका था लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना
0: रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी

0: नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बम्बई में, तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है,
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी आज तक उसकी रीलें चलती हैं, और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्में हैं
1: जो 80s वाला दौर।
0: हाँ हाँ हाँ, 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई। तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो है। वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में।
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू।
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लू। आई विल नेवर फॉरगेट ये। बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में। बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्म, तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल

0: होता है
1: खतरनाक
0: हाँ।
1: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है?
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट,
1: वहां
0: करेक्ट।
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो हाँ, आगे बढ़ती हाँ। है, तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े। लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट,
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
0: बहुत ही और उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट। सब लोगों को ऐसे ना रहे, आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे। वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है,
1: अपना फर्ज निभाओ
0: उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट। तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा खत्म के बाद। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, तो स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। और मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है, और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों के

0: अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ। और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट एक एक घूट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है।
1: ओके।
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं। बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया। तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है, लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर

0: और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओहो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में,
1: हाँ वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त और इसलिए उन्होंने किया। वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन,
1: कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
0: काम किया, बिंदु जी के साथ सो रहे हैं और वो जगाने आती है।
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती

0: वो सदाशिव जी की पोती हो ये तो वो सुन ही रही थी, तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: अर्धसत्य
0: दिखाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही अलग,
1: क्या लीग थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर
1: लेकिन
0: वो इतनी ओवर द टॉप नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी, तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदाजी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था, तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था। स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म, ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी।
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकटनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसर, निलू फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी उनकी वो पहली फिल्म थी।
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी
1: और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को
0: मिला
1: नेशनल अवार्ड। यस तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है तो वो

0: वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है. तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था. तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं. मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तुपुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो. तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं.
1: बिल्कुल.
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है, क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे.
1: जी.
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो. अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो.
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
0: बहुत अच्छी बुनियाद है. और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है. तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं. आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था. मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी. कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे. अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है. तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है. एक्टर का से बहुत कम रह गया है. तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोघी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या ने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी, तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल.
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है.
1: जी.
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी, क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
1: बिल्कुल. यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं, क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम FM 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए विविधा के अंतर्गत परिचर्चा। विषय है सांपों से डरे नहीं, बचाओ और संरक्षण करें। विशेषज्ञ हैं विष्णु श्रृंगी और डॉक्टर विनोद माहोबिया।
1: श्रोताओं, आज हम एक चर्चा इस विषय पर करने जा रहे हैं कि बरसात के मौसम में जो एक बड़ा खतरा हम मानते हैं वो है कि सांप या इसी तरह के और जहरीले जीव जंतु अक्सर देखने में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और मोटे तौर जहरीले जीव जंतुओं के प्रति क्या हमारा रुख होना चाहिए, इसी विषय पर आप विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद महोबिया जी, जिनका खासा अनुभव है जहरीले जीव जंतुओं के काटे व्यक्तियों के उपचार में। और साथ हैं हमारे विष्णु श्रृंगी जी, जो कि गोताखोर हैं और साथ ही पर्यावरण प्रेमी भी हैं, और सांप या इसी तरह के जहरीले जीव जंतुओं को पकड़ना, उन्हें उचित स्थान पर जाकर छोड़ना और इसी तरह के कई कार्य इन्होंने अपने हाथ में लिए हैं और उनको संपन्न किया है। आप दोनों का हमारे स्टूडियोज में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस मौसम में ऐसा क्या खास हो जाता है कि अचानक इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, जहरीले जीव जंतुओं के शिकार जो हैं सामने आने लगते हैं।
2: ऐसा है कि ये जंतु जैसे सर्प हैं, बिच्छू हैं, मकड़ियां हैं, मधुमक्खियां हैं, या बर या टांटिया जिसको बोलते हैं वो हैं, और जिसको यहाँ पर मांडल बोलते हैं या सेंटीपीड बोलते हैं या कातर बोलते हैं, ये सब जंतु एक खास तापक्रम के ऊपर ही जिंदा रह सकते हैं। अगर तापक्रम कम हो जाएगा यानी ठंड हो जाएगी तब भी ये जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए जो सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर ये धरती के अंदर जहां पर भी कहीं जैसे चूहे के बिल हैं या दीमक के बामिये हैं या कहीं चट्टानों के नीचे या जहां पर भी इनको जगह मिलती है, कहीं
1: उपयुक्त तापक्रम जहां पर हो, गर्मी हो, वहां पर वो शरण ले लेते
2: जी। इसी प्रकार से अगर तेज गर्मी होती है तब भी ये धरती के अंदर चले जाते हैं, तो ये अब ये जानते हैं कि वहां पर किस जगह पर जिंदा रह सकते हैं। और जब प्रकृति अपना एक पूरी हरियाली सब जगह पर जहां छा जाती है और तापक्रम बहुत ही सुहावना हो जाता है, तो मौसम सुहावना हो जाता है, बरसात आती है, करीब 15 नवंबर से धरती के अंदर चले जाते हैं और अब करीब 6.5 महीने के बाद ये जो है वहां से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलकर इनको स्वाभाविक है कि वहां अंदर धरती के अंदर इनको भोजन भी प्राप्त नहीं होता है और इनके जो वसा पदार्थ शरीर में रहते हैं उसी से ये अपना काम चलाते हैं, तो अब जो है वो उनको भूख भी लगी जाती है। और दूसरा, जब बिलों के अंदर पानी जाता है तो इनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन या वायु की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये बाहर आते हैं। तीसरी बात ये कि इनकी जबान जो है, जो जिह्वा है, वो आगे से दो भागों में विभाजित होती है। इनका ऊपर का तालू है मुंह के अंदर, वहां पर एक अंग होता है जिसको जैकॉब्सन ऑर्गन बोलते हैं, और ये जब जबान बाहर निकालते हैं तो इनकी जबान के ऊपर जैसे हम किसी चीज को चाख सकते हैं या पता लगा सकते हैं कड़वा है मीठा है किस प्रकार का,

0: तो इनकी जबान के ऊपर जब जो वायुमंडल में कण होते हैं वो जैसे ही इनके उसमें लगते हैं तो ये बहुत ही संवेदी होते हैं और इनको ये पता लग जाता है जैसे ये बिल से बाहर निकलते हैं या रात को बाहर निकलते हैं कि इनका साथी जो नर है उसको मादा किधर मिलेगी और मादा को पता लग जाता है कि नर किधर मिलेगा
1: जी।
0: तो ये जो है इनका जो अपना संतति बढ़ाने का भी समय होता है और दूसरी बात ये कि इनको ये भी पता लग जाता है कि

0: इसकी तलाश में जब वो निकलते हैं तो निश्चित रूप से मानव के संपर्क में भी आ जाते हैं।
1: इनको कोई थाली तो परोसता नहीं है
0: जी,
1: तो इसलिए इनको अपना भोजन खुद ही तलाश करना पड़ता है।
0: संगी साहब, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, अक्सर लोग जैसे ही देखते हैं कि सांप है या इसी तरह का कोई और जीव जंतु हो, एकदम से हड़बड़ा जाते हैं और पहली जो उनकी प्रवृत्ति होती है वो है उसको मारने की तरफ दौड़ना, अपने को बचाना या उसे मारने की तरफ दौड़ना। तो ये प्रवृत्ति क्या सही है? क्या
2: नहीं, बिल्कुल गलत है। ये जो सांपों को मारने की प्रवृत्ति है वो आज से नहीं बरसों से चली आ रही है
0: जी।
2: लोग सिर्फ ये जानते नहीं है कि वो जहरीला नहीं है, हो सकता है और जहरीला भी हो तो उसका योगदान है अपना, तो उसको मारे नहीं और न ही हड़बड़ाए। सांप जो है वो चल करके कभी किसी को काटता नहीं है, और उसको मारने के लिए अगर आप दौड़ेंगे, उसको अगर टच करेंगे तो हो सकता है वो गुस्से में आ जाए और आपको काट सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भयभीत न हो, सांप कोई मारने की चीज नहीं है, उसे मारे नहीं, और जब सांप दिखता है तो हड़बड़ाए भी नहीं और भीड़ भी न करें। मैं जब जाता हूँ सांप पकड़ने, लोग काफी भीड़ मचाए रखते हैं वहाँ और एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं, तब ऐसे में दुर्घटना घट सकती है, सांप या तो उनको काट लेगा या हड़बड़ाहट में सांप को मार डालेगी भीड़।
0: जी,
2: लोग जो है मारने पे ही उतारू होते हैं ज्यादातर, कि मार देते हैं, वो अपने आप को गलत है वो मारना सांपों को। सांपों को मारना नहीं चाहिए, बिल्कुल नेचर में उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो जितना योगदान है वो सब
0: जी हाँ प्रकृति में उनका भी अपना एक स्थान है और एक जीवन श्रृंखला में उनकी एक स्थिति है और योगदान है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि हर सर्प जहरीला तो नहीं होता,
1: नहीं।
0: ये निर्णय कैसे किया जाए कि सामने जो हमारे सर्प है या ऐसा ही जीव जंतु जहरीला है या नहीं?
1: कुछ ही किस्म के सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं, और उनको पहचानने के लिए पहली चीज तो मैं मुख्य जो जहरीले जंतु हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि काला नाग जो होता है उसका रंग आमतौर पर काला ही होता है। कभी कभी जैसे मनुष्यों के अंदर भी जिनकी जो त्वचा है बिल्कुल सफेद जैसी होती है तो कभी कभी वो एल्बिनो कहलाते हैं और कभी कभी सफेद भी हो जाते हैं या भूरे से रंग के, गहरे भूरे से रंग के भी होते हैं। लेकिन उसकी दूसरी पहचान जो साधारण मनुष्य के लिए है वो ये है कि जैसे ही उसको थोड़ी सी आवाज आएगी या ये शक होता है कि कोई आसपास है या कोई उसको मार नहीं दे तो वो अपने फन फैला देता है। तो उनके अंदर 400 पसलियां होती हैं शरीर के अंदर, जो ऊपर की गर्दन के आसपास की पसलियां होती हैं वहां पर उनके अंदर ये क्षमता, उसमें ये क्षमता होती है नाक के अंदर कि वो अपनी पसलियों को फैला सकता है और सीने को फैला करके चौड़ा कर सकता है, तो जिसको हम साधारण फन बोलते हैं
0: जी।
1: तो पहली पहचान तो अगर वो जरा सा भी कहीं पर डिस्टर्ब होता है तो उसको ये पता लगता है कि कहीं उसके ऊपर कोई अटैक हमला करने वाला है या उसको अपने बचाव के लिए वो फुसकार भी मारता है साथ साथ, जिससे कहता है कि भैया देखो मेरे को तंग मत करो, मेरे को जो है वो कोई नुकसान मत पहुंचाओ, कोई कोशिश मत करो, मैं अपने आप में अलग हूं और मैं जानता हूं कि मैं आपको नहीं खा सकता, आप इतने छोटे जंतु नहीं है, कोई चूहा या मेंढक नहीं है जिसको कि मैं निगल जाऊं।
0: वो अपने आक्रामक रवैये से ये बताना चाहता है कि दूरी वो चाहता है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही
0: जी। एक छोटी सी बात हम जानना चाहेंगे कि किसी को दंश लगता है तो दंश के निशान से भी क्या हम ये पहचान सकते हैं कि दंश जहरीले नाक का या जहरीले जानवर का है या बिना जहरीले जानवर का?
1: बिल्कुल पहचान सकते हैं, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जितने भी जहरीले सर्प हैं उनके ऊपर के जबड़े के अंदर आगे की तरफ दो बड़े दांत होते हैं, और वो दांत जो हैं वो देखिए दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, एक तो कपड़ा सीने की सुई होती है जो कि ठोस होती है
0: जी,
1: और दूसरा इंजेक्शन लगाने की सुई, आमतौर पर सभी आदमियों ने देख रखी होगी, वो जो इंजेक्शन लगाने वाली सुई है वो बीच में से आर पार होती है जब भी वो दवाई उसके अंदर से होती हुई और शरीर में प्रवेश करती है
0: जी।
1: तो जो दोनों विषदंत हैं ऊपर के जबड़े के अंदर वो विषदंत जहर की थैली से जुड़े रहते हैं, नली से जुड़े रहते हैं, और जैसे ही सांप काटता है उसका दो हड्डियां होती हैं जो कि उसको जो ग्रंथि है उसको दबा देते हैं, और दबते ही जैसे सिरिंज के पिस्टन पीछे से डॉक्टर या कंपाउंडर दबाता है और वो दवाई अंदर शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार से जैसे ही वो दंशित होता है मनुष्य तो दवाई वो जो जहर है वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, और उसके दो निशान साफ दिखाई देंगे आपको।

0: अगर बिना जहर वाला सांप है तो उसके छोटे छोटे से निशान दिखाई देंगे। दूसरी बात यह कि जहां पर भी कोई जहरीला सांप काटता है, मुख्य तौर पर चार जहरीले सांप होते हैं अपने यहां पर, और जो उसके वो दो निशान बनते ही हैं ध्यान से देखने से, एक सांप जरूर जो कि रात को निकलता है उसको यहां पर काला गंडासिया या क्रेट बोलते हैं, उसके दांत बहुत छोटे होते हैं विष्णंत तो, लेकिन फिर भी उसका निशान बनता है, लेकिन उसको उस जगह पर जो है बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। दूसरी बात ये कि वहां पर काटने के बाद वहां पर जो वाइपर किस्म के सांप होते हैं उससे तो ऐसा लगता है जैसे अंदर मिर्च चली गई हो, और काला नाग जब दसता है तो ऐसा लगता है जैसे अंदर आग चली गई हो। मेरे साथ ये विष्णु जी हैं, इनको तीन बार चार बार सांप काट चुका है, और इन्हीं का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद का, तो इन्होंने ये बताया कि साहब मेरे तो डस्ती ऐसा लगा जैसे अंदर अंगारा चला गया हो आग का। तो काले नाग के काटने के बाद अंदर ऐसा लगता है जैसे आग का अंगारा अंदर चला गया हो। तो ये दोनों चीजें जब उसमें दर्द होता है, सूजन आती है और दो साफ निशान दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दंशित हुआ है मनुष्य और जहरीले जानवर द्वारा हुआ है।
1: और जब बिना जहर का कोई सांप अगर डसता है तो क्या उसमें इस तरह का तेज दर्द नहीं होता?
0: देखिए ऐसा है कि अगर छोटी सी सुई या कांटा भी चुभता है तो दर्द तो होता है। कई जने क्या करते हैं कि वहां पर बहुत पुरानी ऐसा कुछ विचार चले आ रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है, मैं आपको बताता हूँ कि लोग बाग नहीं जानते कि कहाँ पर नस है कहाँ नहीं है, और ब्लेड से वहां चीरा लगाने की कोशिश करते हैं, वो और नुकसान करता है। क्योंकि अगर साधारण जानकारी में आपके ये हो कि हाँ ये एक मिलीमीटर है ये दो मिलीमीटर है, तो दांत तो उसका ज्यादा बड़ा नहीं होता है जो विष्णंत है, लेकिन जो चीरा लगाते हैं वो जो है आधा सेंटीमीटर या एक सेंटीमीटर तक गहरा लगा देते हैं
1: जी।
0: तो वो जो कण वास्तव में अगर हम भी दो तीन दिन चार दिन अगर मान लीजिए ब्रश नहीं करें, दांत साफ नहीं करें, तो मुंह में से बदबू आती है। सांप के दांत कौन साफ करता है, उसके तो हाथ भी नहीं होते बेचारे के, तो वो कहीं नाली में से कहीं जो है वो जानवरों को, छोटे मोटे जानवरों को पकड़ता रहता है। तो उसके मुख गुहा के अंदर करीब 15 से 16 किस्म के तो बाकायदा बैक्टीरिया या जो कि जीवाणु कीटाणु जो हैं वो मौजूद होते हैं, और अगर मान लीजिए उसका प्रॉपर अच्छी तरह से सफाई नहीं करें और उस जगह चीरा और लगा दें, तो वो जो एक दो मिलीमीटर दूर गहराई जो उसका दांत लगता है उसके बजाय वो और गहराई में पहुंचा देते हैं कीटाणु को, और वो जगह जो है वो वहां पर घाव बन जाता है, सड़ जाता है और बड़ी मुश्किल हो जाती है जान बचानी। तो इसलिए चीरा कभी नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, और न ही उसको जैसे बांह के अंदर कलाई से लेकर के और कोहनी तक हमारी दो हड्डियां होती हैं रेडियस और अल्ना, और इसी तरह से नीचे टखने से लेकर के और घुटने तक दो हड्डियां होती हैं। आप खुद सोच करके देखिए क्या आप बांधने से दोनों हड्डियों को बिल्कुल जोड़ सकते हैं क्या? अगर यूं जुड़ जाए तो फिर तो जो अगर मान लीजिए हड्डी टूटती है तो प्लास्टर बांधने की जरूरत ही नहीं बचेगी। इसलिए ये बिल्कुल गलत है, जिसके अंदर के आप देखिए हम हर सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं जो कि पैर की छोटी उंगली तक जाता है, और इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं हम, जो गैस वायु बाहर निकालते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। तो आपने ऑक्सीजन बंद कर दी उसको बांध करके, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी बंद हो गई, जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बराबर गुर्दे जो साफ करते रहते हैं वो आपने बंद कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसको बांध देते हैं बिना मतलब, उसके बांधने की वजह से जो है आदमी बहुत परेशान हो जाता है। इस प्रकार की जो पुरानी भ्रांतियां हैं कि वहां पर चीरा लगा दो बांध दो, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा, एक इस मोड़ पर एक बात पूछना चाहूंगा, अगर हमें जहां पर सांप ने काटा है उसके ऊपर बांधना नहीं है, चीरा नहीं लगाना है, तो सबसे पहला जो कार्य किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए वो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जबकि किसी सांप ने काटा हो?
0: उसको ऐसा करना चाहिए कि जो साधारण सिरिंज होती है इंजेक्शन लगाने की, पीछे की तरफ जहां पिस्टन होता है वहां से लेकर के और आगे तक जहां एक नंबर लिखा रहता है या जीरो लिखा रहता है वहां तक बिल्कुल उसको गोलाई के अंदर काट लेना चाहिए
1: जी।
0: उसको लहर ये की तरह से अगर काटेंगे तो उसके अंदर जो है खाली स्थान या वैक्यूम या वो नहीं बनेगा, सक्शन नहीं बनेगा
1: जी।
0: तो उसी जगह पर इसको, जिस जगह पर उसके दांत लगा है या बिच्छू का डंक लगा है या मधुमक्खी का डंक लगा है या उसका बर का डंक लगा है, कोई भी जानवर अगर

0: मान लीजिए डस लेता है या डंक मार देता है उसी जगह से, और हम तुरंत उसी स्थान से, उसी छेद में से जिससे कि जहर अंदर गया है, उसी छेद में से हम जहर को वापस बाहर निकाल सकते हैं। ये एक विधि है।
1: यानी कि सिरिंज को इस तरह से काट ले कि वो एक सक्शन पंप की तरह से काम करने लग जाए, और उस पंप की सहायता से डसे हुए जो निशान है उसके ऊपर उसको रख कर और खून को सक करना, यानी चूसने की कोशिश की।
0: नहीं, जहर आएगा उससे,
1: खून में मिला हुआ जो जहर है वो बाहर आ जाएगा।
0: अभी आपने जो है, महेंद्र जी ने ये महसूस किया है, हमने ये लगा करके दिखाया
1: जी, आपने जो है अपनी तरफ से जो बनाई हुई एक सिरिंज को काट के जो सक्शन पंप है वो लगाया मेरे, और उससे महसूस हुआ कि कुछ खींचा जा रहा है।
0: ये विधि, क्योंकि मैंने ही इसका अनुसंधान करके और इसको खोज की है, इसको महोबिया विधि के नाम से जानते हैं, महोबिया टेक्निक के नाम से जानते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये 2-4-5 रुपए के अंदर सिरिंज आती है, और 10 सीसी की सिरिंज का मैंने गणित करवाया है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर इतना सक्शन होता है, इतना खिंचाव होता है कि ये धरती में से 9 से 10 मीटर गहरे पानी को खींच सकता है। और जो छोटी सिरिंज होती है 2 सीसी वाली, अगर मान लीजिए, ये तो बड़े की बात है, लेकिन अगर कोई बच्चा, और बच्चा कहीं पर लेटा हुआ है और वहां पर पिताजी उसके देख रहे हैं और वहां पास में सांप है, और उसने इससे पैचित ले के वो सांप को हटाएं या उस बच्चे को उठाएं और सांप ने डस लिया वहां पर, तो उसकी जो उंगली पतली है उसके लिए हम 2 सीसी की या 1 सीसी की जो सिरिंज,
1: छोटी सिरिंज
0: आती है, उससे हम उसी जगह से, वहां से जो है उसका जहर वापस बाहर निकाल सकते हैं।
1: और इस तरह से जहर की काफी मात्रा बाहर आ जाएगी।
0: जब जहर बाहर आ जाएगा तो मरने का कोई चांस नहीं है, और जब आप गांव से और हमारे पास तक आए उस वक्त भी इस सिरिंज को अपने काम में लेते रहें। वैसे तो ये डिस्पोजेबल सिरिंज कहलाती है, इसलिए कि जो सुई हम काम में लेते हैं उससे किसी के शरीर का कोई कीटाणु दूसरे के शरीर में न चला जाए, लेकिन ये सिरिंज जो हमने, हमारा तरीका है, इसको आप 1000 बार काम में लीजिए, सिर्फ उसको बाहर खींचना है और इसको स्प्रिट से आप साफ करके रखें। आप वहां से आते हुए ये सिरिंज जो है थोड़ा सा इसका पिस्टन आगे को लेंगे तो उसका जो खींचने की पावर है, सक्शन पावर है, वो कम हो जाएगी। आप इसको हटा लीजिए रुई से या किसी भी चीज से, उसको पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए, साबुन से साफ कर लीजिए। सिरिंज को भी चाहें तो साबुन से साफ करके बार बार काम में ले सकते हैं, चाहे 1000 बार काम में लें, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
1: बहुत महंगी भी नहीं है, और इसको पहले से तैयार करके रखें घर में कभी।
0: हाँ, हमेशा जो है, जैसे मैंने आज आपको बताया, तो अगर प्यास लगने के बाद कोई कुआं खुदता है तो उसको आप जानते हैं कि क्या कह सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और जब एक बार पता लग जाए कि हाँ, हमारे को ये जान बचाने का तरीका है, तो हरेक को अपने खेत में, अपने गाँव में, अपने घर में, और खासतौर पर मैं कहूंगा कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं, उनको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, ये दूसरे परिवार में जाती हैं, और दूसरे परिवार में जाकर के और दूसरे परिवार को भी ये बात बताएंगी, और ये बात जो है सबको पता लगे, हर एक को अपना जीवन जीने का अधिकार है, तो ये एक ऐसी चीज है कि जो जान बचाती है। तो ये और बहुत ही आसान तरीका है, जिसके अंदर के पैसे भी कुछ नहीं लगते हैं, और आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। उसको गांव से यहां तक 2 बार 5 बार 6 बार आप करते हुए ले आएं और फिर हमारे पास आ जाएं, बाकी का इलाज हम जानते हैं कि भाई कितना जहर बाकी रह गया है और उसको कितना करना है, लेकिन उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो जान बचाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन गरीब आदमी जो कि खेत के अंदर है, कोई मजदूर है, कोई पत्थर उठा रहा है, कोई लकड़ियां उठा रहा है, और उस लकड़ी के अंदर या जो कंडे होते हैं उसके अंदर सांप आमतौर पर मेंढक को या छिपकली को या दूसरे जानवर को खाने के लिए वहां रहते हैं, तो आप कृपा करके, और मैंने देखा है कि जो बूढ़ी औरतें हैं वो बेचारी कंडों के अंदर हाथ डालती हैं और वो उनको काट लेते हैं। तो औरतों को ऐसा नहीं करना, मतलब वहां नहीं भेजना चाहिए, रोशनी रखनी चाहिए, टॉर्च रखनी चाहिए, जब तक कि वो जगह साफ दिखाई नहीं दे तब तक हाथ बिल्कुल न डालें, कहीं पर भी अंधेरी जगह पर भी आप हाथ नहीं डालें।
1: हम संगी साहब से पूछना चाहेंगे, आपने बहुत बड़ी संख्या में इस तरह का अनुभव लिया है कि जो सांप निकला लोगों ने आपको सूचित किया और आपने उसको पकड़ के सुरक्षित स्थान पर दूर बस्ती से जंगल में छोड़ा, किस तरह के स्थानों पर ज्यादातर दिखाई देते हैं इस तरह की घटनाएं, किस तरह के स्थान पर ज्यादा होती
2: है? देखिए, सांप वहां ज्यादा दिखाई देते हैं जिनके घरों में लोन है,
1: जी
2: बाढ़ लोन है, अच्छा बड़ा मकान है,
1: जी
2: या खेत है आसपास और वो घर में घर बना रखा है खेत में ही, तो वो सांप नेचुरल है घर में चला आते हैं।

0: कभी कभी, और बड़े लोन हैं जिनके बड़े बंगले हैं
1: जी
0: तो वहां पर तो अक्सर क्योंकि मेंढक है, चूहा है, वहां रहते हैं, कॉकरोच है, तो छोटे सांप और बड़े सांप सभी तरह के सांप जो है वो चले आते हैं।
1: यानी कि एक तो ध्यान ये रखना है कि उनके जो खाद्य,
0: हाँ, उनका जो मेंढक है जो सांप खाते हैं तो वो वहां पर आप सफाई रखें। लोन है तो ऐसा नहीं, लोन नहीं रखना चाहिए, लोन रखें पर आसपास जो है वो सफाई रखें। जो अपना गेट होता है घर का उसके नीचे स्पेस नहीं होना चाहिए, अंदर जो जालियां लगी होनी चाहिए, जैसे बाहर आउटलेट्स होते हैं
1: जी,
0: जो पानी बाहर निकालती नालियां हैं
1: जी,
0: उनमें लोग भूल जाते हैं कि अंदर जालियां लगा दें, जालियां नहीं लगाते हैं वो, तो उसमें से अंदर पाइप से अंदर आ जाता है सांप, तो अक्सर किचन के अंदर सांप निकलते हैं, है ना, किचन में गोयरा जो है वो निकल आता है, हालांकि वो जहरीला नहीं होता है पर वो अंदर आ जाते हैं खाने के लिए, तो लोग उनसे डर हड़बड़ा जाते हैं किचन में सांप, तो ज्यादातर किचन में निकलता है। तो मैं देखता हूँ अक्सर कि किचन के अंदर से जो पाइप जा रहा है उसमें जाली नहीं है, या वॉश बेसिन है तो वहां से अंदर आ जाता है, या उनके गेट के नीचे बहुत गैप है तो गैप की वजह से अंदर आ जाता है, तो उनके गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा रखें घर को सुरक्षित।
1: शंकी साहब, क्या ऐसा है कि जब बरसात होती है चारों तरफ पानी भर जाता है तो सांप वगैरह भी सूखे स्थान को तलाशते हुए सूखे स्थान पे आते हैं, और वहां कोई ऐसी चीज पड़ी हो जैसे टीन की चादर,
0: हाँ, उसके नीचे गर्माहट लेने के लिए, जैसे भूसे का ढेर है, हाँ, भूसे का ढेर लगा के रखेंगे और तो सांप नेचुरल है उसमें गर्माहट पाने के लिए आएगा, कंडे हैं उनमें बैठ जाता है सांप आकर के, ज्यादातर ऐसा ही मिलता है। एक घर है यहाँ पर बड़े अधिकारी का, मैंने एक ही कमरे से 4 बार कोबरा पकड़ा, क्यों, क्योंकि उस घर में कंडे थे और चारों बार उन्हीं अधिकारी के यहाँ पर मैंने पकड़ा।
1: अपने घर के आसपास ऐसी परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होने दें,
0: हाँ,
1: कि सांप को आहार या आश्रय
0: जैसे बुखारियां हैं नीचे अपनी सीढ़ियों के नीचे बुखारियां बनी होती
1: है,
0: काफी सारा कबाड़ हम लोग जमा कर देते हैं उनमें, और उस पर गेट भी नहीं होता है, आराम से सांप अंदर आकर के बैठ सकता है। वो वॉशिंग मशीन पड़ी है बाहर, कोई कबाड़ रखा है उसके अंदर आकर के बैठ जाएगा। सुबह ही मेरे पास फोन आया कि फ्रिज के अंदर सांप घुस गया, तो फ्रिज बाहर रखा था, कमरे में नहीं था, फ्रिज के अंदर सांप घुस गया, तो नेचुरल है जो कबाड़ रखते हैं उसमें अंदर उनके बैठने का स्थान बना लेते हैं,
2: छिपकली
0: और छिपकली भी जाती है अंडे और ये छिपकली खाने के,
1: जहां उसे आहार मिल सके और जहां उसे आश्रय यानी कि शरण मिल सके, ऐसे स्थानों को आप थोड़ा सा सुरक्षित
0: रखिए।
1: और कोई इस तरह का गंध का इंतजाम कर सकते हैं जिससे वो दूर भागते हैं?
0: हाँ हाँ, कीटनाशक डालना चाहिए, फिनाइल है।
1: हाँ डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके मुंह से जानना चाहेंगे, ये क्या कोई ऐसी गंध हो सकती है जिससे सांप और इस तरह के जानवर दूर भागे?
2: देखिए, पास बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब सांप है, गोयरा है। पहली चीज तो मैं एक बहुत ही, ये क्योंकि माध्यमिक इतना अच्छा है जिसके अंदर के गाँव वालों को पता लग सकता है कि गोयरा बिल्कुल जहरीला नहीं हो। भारत के अंदर मगरमच्छ, घड़ियाल, गोयरा, छिपकली, गिरगिट, इनमें से कोई सा भी जंतु जो कि छिपकली जैसा दिखाई देता है वो जहरीला नहीं हो। दूसरी बात ये है, उनसे डरना छोड़ दें। हाँ, ये बात जरूर है कि वो किसी पत्थर के नीचे हो या किसी पाइप के अंदर हो और आप उसके अंदर हाथ डाल दें तो वो स्वाभाविक है कि उसको ये लगता है कि हाँ छिपकली आई मेरे को खाने के लिए, क्योंकि छिपकली पतली होती है, उनको निगलने के अंदर आसानी होती है, इस वजह से वो उसके ऊपर। दूसरी बात ये ध्यान रखें बरसात के मौसम के अंदर कि कोई किसी के पैर के नीचे नहीं आ जाए। अगर आप शाम को निकल रहे हैं या अंधेरे के उसके अंदर रहें तो आपको जरूर टॉर्च रखनी चाहिए और एक लाठी अपने पास करीब 4-5 फीट लंबी हो, जिससे अगर आप देख भी लेते हैं आपके आसपास सांप तो उसको दूर कर सके। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर जो आप साधारणतया हर एक को कटिंग करवाने के लिए जाना पड़ता है, बाल कटवाने के लिए, उनके पास एक छोटा सा पंप होता है जिसके अंदर से एक स्प्रे निकलता है, एक फुहारा जैसा निकलता
1: जी
2: है।
1: हाँ।
2: वो पंप हरेक को रखना चाहिए अपने पास, और फिनाइल की एक बोतल जरूर मंगा करके रखनी चाहिए, खासतौर पर बरसात के दिनों में। वो नाली के अंदर या जहां पर दरवाजा है जहां से कि नीचे संत अभी विष्णु जी ने बताया
1: जी।
2: या कोई खिड़की है जहां से कि उसके सांप के आने का रास्ता, सांप के लिए कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां के सांप प्रवेश न कर सके, पतली छोटी छोटी जगह भी होगी तब भी वो प्रवेश कर जाएगा। तो आप इस प्रकार का अपने पास रखें, फिनाइल की बोतल मंगा के रखें जो कि नाली में आमतौर पर काम में लेते हैं, और ये पंप रखें जिससे कि कहीं पर भी आपको कोई ऐसी गुंजाइश लगती हो कि यहां से सांप आ सकता है या आ गया है घर में या गोयरा आ गया, उसको पंप से दूर से कभी उसको पकड़ने की मारने की कोशिश नहीं करें, वो भी जीने का अधिकार रखते हैं। आप उस पंप

0: से वहां पर जो है वो फुहारा जैसा उसके ऊपर पास छोड़ें, वो अपने आप जो है उसको रास्ता पता होता है। जितने भी सांप हैं वो एक खास प्रकार के गंध छोड़ते हैं वायुमंडल के अंदर, जैसे मधुमक्खियां होती हैं या बहुत सारे जंतु हैं जो कि अपने गंध छोड़ते हैं। आप इंसान तक भी अगर देखें, दो भाई भी होंगे तो उनके बनियान के अंदर अलग अलग तरह प्रकार की गंध आएगी, तो वो गंध छोड़ते हैं, उनको पता होता है कि वो किधर से आ रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, कहाँ रास्ता है। तो आप सिर्फ वो दूर से उनके ऊपर वो फुहारा छोड़ें उसका, और वो अपना रास्ता अपने आप चला जाएगा, कोई उसको मारने की कोशिश नहीं करें। हो सकता है कि वो जहरीला हो और आप उसको छेड़ने की कोशिश करें तो कुछ सांप जो है 5 से 6 फीट तक ऊपर उछल करके और काट लेते हैं, या कभी ऊपर खपरेल के जो छत होती है उसके अंदर भी सांप आ जाता है वो, क्योंकि चिड़ियों को या उसके अंडों को उनको खाने के लिए आता है। तो आप कभी अपनी ये होशियारी नहीं करें कि आप पीछे से पूंछ पकड़ने की कोशिश करें, वो सांप जो है लटक करके आपको काट लेगा। और इस तरह के हमारे पास तो बहुत सारे केसेस आते हैं, इसलिए कभी को भी सांप को कम न समझें। तो आप बहुत ध्यान रखें, कहीं पर भी इस तरह के अंधेरी जगह हो वहां हाथ नहीं डालें, अपने पैर को नहीं डालें हमेशा जो है इस तरह के। बिल्कुल ठीक बताया विष्णु जी ने कि अगर लॉन भी है तो जमीन से कम 1.5 फीट ऊंचे तक कोई पौधे भी, आपने कोई गुलाब का या कोई भी इस प्रकार के पौधे लगा रखे हो तो बरसात आने से पहले आप 1.5 फीट तक की कम से कम ऊंचाई जो है
1: साफ सफाई करके उसमें
0: उसकी सफाई रखें,
1: छुपने का स्थान ना छोड़ें,
0: क्योंकि उसको ये मालूम है कि अगर मेंढक भी जाकर के आगे दीवार है या कोई भी जगह है तो वहां पर जाए उससे आगे मेंढक नहीं भाग पाएगा, तो वो इसलिए वो किनारे किनारे जाकर के अपने शिकार को तलाशता है।
1: अगर पत्तों की जमावट है तो पत्तों के नीचे उसको आहार मिलता है, तो पत्ता ना जमा होने दें।
2: कीटनाशक डालते रहे वहां पर आसपास, आप अपने लॉन में कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो वो कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे तो मेंढक भी नहीं आएगा, और मेंढक नहीं आएगा तो सांप भी नेचुरल नहीं आएगा।
1: जी आपने पूरी इसकी जो है भोजन श्रृंखला बताई, और इस तरह से एक जीव से दूसरा जीव आकर्षित होता है और सांप भी इसी तरह से आते हैं। सांप हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, अंग है, उसे भी जीने का पूरा अधिकार है, और इस तरह से हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो निश्चित रूप से स्वयं के भी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और उस महत्वपूर्ण जीव को भी
2: बचा सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। किसी और को अगर अपने को थोड़ा ज्ञान होगा तो दूसरे व्यक्तियों को बचा पाएंगे, तो लोगों को सहायता कर पाएंगे। थोड़ा सा इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, लोग भ्रांति में जी रहे हैं। सुबह से मेरे पास लगभग 20 फोन अभी तक आए हैं कि वो गोयरा निकल गया है। गोयरा हमने कई बार बताया कि गोयरा जहरीला नहीं होता है, लोग मानने को तैयार नहीं है, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है, वो उसके बारे में न तो पढ़ते हैं न वो जानना चाहते हैं। तो हम जब बता रहे हैं कि इतने सालों से, और बाकायदा कटवा करके बताते हैं, मुंह में उंगली दे करके बताते हैं
1: जी,
2: तो भी नहीं मानने को तैयार है, तो इसको जाने और पढ़ें।
1: श्रोताओं विस्तार से आपने जाना कि किस तरह से बरसात के ऋतु में जो एक खतरा हम मानते हैं कि सांप का दिखना या उसका डसना, हम थोड़ी सी सावधानी रखकर हम अपने आप को बचा सकते हैं और उस जानवर की जान भी बचा सकते हैं। डॉक्टर विनोद महोबिया साहब और श्री विष्णु संघी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: सर। धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे विविधा के अंतर्गत परिचर्चा, विषय था सांपों से डरे नहीं बचाव व संरक्षण करें। विषय विशेषज्ञ थे विष्णु श्रृंगी, डॉक्टर विनोद महोबिया। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं रेडियो साथी अभिषेक तिवारी।

एक सीड बॉल यानी एक आशा, एक पौधा अर्थात एक भविष्य, हरा भरा भविष्य। प्रकृति संरक्षण की एक ऐसी ही सुबह रविवार को कोटा के अभेड़ा वन क्षेत्र में देखने को मिली, जहां

0: सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों ने पौधारोपण और बीजारोपण किया। दरअसल 15 दिवसीय सीड बॉल निर्माण कार्यशाला के समापन पर ये सभी पर्यावरण प्रेमी अभेड़ा वन क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान सभी ने वन भ्रमण करके पेड़ पौधों एवं वन क्षेत्र में मौजूद वन्य जीवों आदि के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। कोटा के वन्य जीव उपवन संरक्षक श्री अनुराग भटनागर भी इस अवसर पर मौजूद रहे। श्री भटनागर ने इस अवसर पर सीड्स बॉल के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि
1: सीड बॉल का क्या पर्पज है ना? तो एक सिंपल सी आंसर तो एकदम से मैं आपको बता देता हूँ कि सीड बॉल सिंपल सा आपने बना लिया, रख के चल रहे हो, आपको आप कहीं भी डाल सकते हो, वो पौधा उग जाएगा, है ना। लेकिन पौधा लगाने को कहूंगा तो पौधा कैसे लेके आओगे, कहाँ रखोगे, खड्डा कहाँ खोदोगे, कैसे उसको लगाओगे, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब ये जब हम इसकी सीड बॉल की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका पौधा तैयार करने का है सीड से है, क्योंकि जैसे ही आपने सीड डाला दो पत्ते बाहर निकलते हैं और एक उसकी रूट नीचे चलती है। यदि इतना बड़ा ऊपर आया है पत्ता तो इतना नीचे उसकी जड़ जाएगी। सबसे इस एस्टेब्लिश जो पौधा तैयार करते हैं हम, वो हम करते हैं सीड से। सीड क्या चीज है? सीड एक अपने आप में पूरा वो पूरे वृक्ष को रखता है। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? उसके अंदर एक तो उसके पत्ते जो निकलेंगे वो है, एक रूट का मटेरियल है, और उसके अंदर पूरा कंप्यूटर है, पूरा उसकी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है उसके अंदर कि मुझे क्या करना है। अभी आपको मैं बेल पत्र का बीज देता हूँ, आप उसको जनवरी में डालो, हुए नहीं, आप डाल दो, पानी डालो, मिट्टी डालो, ये डालो, वो डालो, सब नहीं हुए, बैठा बैठा बेवकूफ बना रहा है मेरा, मुझे निकलना ही नहीं है, मुझे कब निकलना है, खाली पानी चाहिए होगा ना। उनके जो फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है, इतनी ह्यूमिडिटी भी चाहिए उसको, इतना टेम्परेचर भी चाहिए उसको, इतनी एयर भी चाहिए। जब वो देखेगा अंदर बैठा हुआ बाहर से कि क्या क्या चीजें मेरे फेवर में, सब चीजें फेवर में, तब वो बाहर निकल के आएगा, अदरवाइज वो बैठा रहेगा। जो सीड इसके अंदर हमने डाला वो डाला ड्राई सीड। दो तरह के सीड होते हैं, ड्राई सीड होता है, एक वेट सीड होता है। ड्राई सीड का मतलब आप उसको जेब में रख के जा सकते हो, उसके ऊपर पानी डालोगे चिकना होगा, वो पानी भी अपने ऊपर नहीं आने देगा, खराब नहीं होने देगा। एक होता है वेट सीड, आम का बीज, आम का बीज जेब में रख सकते हो, जामुन का बीज आप जेब में रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, ठीक है ना, लसोड़ा का बीज रख सकते हो, नहीं रख सकते। ये वेट सीड्स हैं। वेट सीड्स की लाइफ बहुत कम, 2 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम वो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर, उसको पानी चाहिए होता है, और पानी जैसे उसका बाहर से सूखा, जैसे नीम की निम्बोली है, नीम की निम्बोली आपने डाली वहाँ पे, 10 दिन यदि आपने नहीं किया वो मर जाएगी।
2: फ्रिज में रख दें तब भी,
1: कहीं भी रखो आप उसको, ठीक है, थोड़े दिन, वो 5-10 दिन आगे पीछे हो सकती है। तो इसका पर्पज ये था कि हमने इसमें सारे ड्राई सीड्स रखे, वेट सीड नहीं रख सकते। यदि आपने वेट रखा तो ये मॉइस्चर उसको खींचेगा, हाइड्रेशन होगा तो वैसे ही मर जाएगा। सीड का काम क्या होता है? या तो वो मिट्टी बन के न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो पौधा बनाएगा, दो ही काम है, तीसरा काम कोई नहीं है उसका, ठीक है ना। अब ये ड्राई सीड जो है इसकी लाइफ ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा लाइफ किस सीड की होती है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि आम की है 5 से 10 दिन, निम्बोली की है 10 दिन 15 दिन, बेर का सीड है वो 1 साल तक चल जाता है, बेर का 1 साल सबसे ज्यादा, बट कल्पवृक्ष में बताता हूँ
3: कि 2 साल 100 साल
1: किसका,
3: कई सीड ऐसे,
1: वही मैं पूछ रहा हूँ क्या है, वो है कमल का बीज। कमल के ऊपर हम भगवान को दिखाते हैं, क्यों दिखाया कमल? कमल का सीड ऐसा है कि 1000 साल तक भी नहीं मरेगा, उसका सीड कोट रहेगा और उसके अंदर लाइफ जिंदा रहेगा।
4: ब्लैक वाला जो होता है
1: जिस दिन वो तोड़ के आप उसको निकालोगे वो जिंदा निकल आएगा। इसका मतलब क्या है, सीड की प्लानिंग क्या है? जैसे अभी कल्पवृक्ष, अफ्रीका का पेड़ है, वहाँ पे वो क्या होता है, आप उसके 200 सीड लेके आए, अपने यहाँ पे बोए, इस साल 5 ही सीड उगे, बाकी नहीं उगे, बैठे नहीं हमें नहीं उगना है, अगले साल 10 निकल आए, 20 निकल आए, उससे अगले साल 200 निकल आए। उनकी सबकी अलग अलग प्लानिंग की हुई है, क्यों? क्योंकि वो अफ्रीका में जब वहाँ पे था तो वहाँ पे क्या, वहाँ बहुत तरह का है, वहाँ पे सूखे पड़ते हैं, 2 साल 3 साल तक पानी नहीं आया। तो यदि उस ट्री ने अपनी प्लानिंग क्या कर ली कि 2 साल तक 3 साल तक यदि पानी नहीं आया तो मैं उससे 3रे साल उगूंगा, कुछ इस साल उगा तो मर गया तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, वो 3रे साल वो निकल के आएगा, वो भी मर गया तो 5वें साल निकल के आएगा। वो 5 साल तक अलग अलग सबके अंदर उसकी कंप्यूटर डला हुआ है, सबका प्लानिंग चल।
0: वन भ्रमण के इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, जन भागीदारी एवं प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का संदेश दिया गया। सैकड़ों लोगों ने एक साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी श्रीमती सुनीता गोयल ने कहा कि
5: ये एक वन भ्रमण का हमने एक कार्यक्रम बनाया है। एक्चुअली हमारा पर्यावरण एक गतिविधि है जो राजस्थान दक्षिण पूर्व प्रांत करता है, इसके अंतर्गत पूरा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिला आता है। तो अभी हमने एक कार्यशाला की थी जिसके अंतर्गत हमने 56,000 सीड बॉल्स बनाया था। जैसे अभी वर्तमान में कहते हैं ना कि सीड बॉल जो है वो भविष्य का बीज है, तो पेड़ तो कट रहे हैं लेकिन जब हम सीड बॉल को थ्रो करते हैं तो कहीं ना कहीं उगेंगे, ये निश्चित है। तो एक तरह से पर्यावरण को बचाने की कवायद है जिसमें

0: आज वर्तमान में अभी एट प्रेजेंट मेरे साथ लगभग 400 से 450 व्यक्ति मेरे साथ इस चीज के लिए आए हैं। तो जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको ये सब चीजें होंगा। इसमें जो हमारा मेन सहयोग कर रहे हैं वो वन विभाग के अनुराग भटनागर जी सर हैं, जिनके माध्यम से आज ये पूरा कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करा पाए हैं। और सब देखिए आप कितने उत्साह के साथ वन भ्रमण में भी हैं और सबके हाथों में सीट बॉल भी हैं। सबको ये बताया भी गया है कि आपको सीट बॉल कहाँ रोपना है, कहाँ थ्रो करना है, क्योंकि चीज बनाने के बाद एक प्रथम उद्देश्य होता है कि उसको किस तरह से हम पूरा अच्छी तरह से उस चीज का महत्व है लोगों तक बता सके। सिर्फ बना लेना उद्देश्य नहीं होता, जैसे पेड़ लगा लेना उद्देश्य नहीं होता, पेड़ को बचाना हमारा उद्देश्य होता है, उसी तरह सीट बॉल को बनाना उद्देश्य नहीं है, उसको किस तरह से रोपना है, कहाँ फेंकना है वो भी है। तो आज ये सभी परिषद के लगभग 400 से 450 मेंबर जो हैं वो इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। जैसे एक जना सीख के जाएगा तो आगे 10 लोगों को बताएगा। तो कुछ ना करते हुए भी अपना वन का जो पक्षी वातावरण, अपने ह्यूमन बीइंग सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज जो है
1: पर्यावरण प्रेमियों से संवाद करते हुए उपवन संरक्षक श्री भटनागर ने पेड़ पौधों, वन्य जीवों एवं कीट आदि के बारे में विस्तार से बताया।
2: ये कुलम मैंने इसलिए बताया, ये हमारे यहाँ का 10,000 सालों का 1,00,000 सालों पुराना है। मैं इसलिए बताया आपको कि ये लाल क्यों हो रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है।
3: लाल
2: ये जो हमारे आप देखेंगे बर्ड पीपल में भी जब पत्ते आते हैं शुरू में तो
3: लाल आते हैं,
2: ज्यादातर जब भी निकल रहा है उसमें नए पत्ते हमारे लाल रंग के निकलते हैं। ये लाल या पर्पल कलर यही क्यों आता है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए आता है, ये एक ट्री का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है कि यदि ये हरा होगा तो कोई भी एनिमल आएगा तो हरे रंग का दिखेगा, क्लोरोफिल है तो उसको चबा के खा जाएगा। फिर दूसरी बात आती है, यदि ये हरा नहीं है लाल है तो लाल ही क्यों दिया, कोई और रंग दे देता पर्पल के अलावा। इसके पीछे पूरी साइंस है। इसके पीछे क्या साइंस है कि ये लाल इसलिए है क्योंकि जो सबसे बड़ा अटैक जो होता है ना, जैसे ये किसने खाया इसको, ये इसको किसने खाया, ये किसने खाया, कीड़े ने खाया, किसी कीड़े ने खाया है ना। सबसे बड़ा अटैक कीड़ों का होता है, कीड़ों से इसको अपने आप को बचाना होता है। तो हजारों लाखों सालों में इसने क्या डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप डेवलप किया कि नए पत्तों को ये लाल रंग का रखेगा। लाल क्यों रखेगा, क्योंकि जितने इनवर्टिब्रेट हैं कीड़े मकोड़े उनको रेड कलर दिखाई नहीं देता है।
3: अच्छा।
2: वो कलर ब्लाइंड होते हैं रेड के लिए, उन्हें हरा दिखता है, हरे तो खाएगा वो लेकिन इसको नहीं खाएगा। क्यों, क्योंकि उसको दिख रहा है कि ये तो कोई वैसी खराब सी चीज है, गलती से कहीं खा ले अलग बात है, लेकिन 99% केसेस में ये सारे पत्ते जो नए वाले पत्ते आ रहे हैं ये अपने आप को बचा लेते हैं। ये इसके अंदर ये वाला लॉजिक है इसका, इनवर्टिब्रेट कोई भी लाल कलर दिखाई नहीं देता।
3: क्या नाम इस पौधे का,
2: कदम
4: कदम
2: कदम कुलम, कुलम भी बोलते हैं लोकल। ये मित्र गायना पारिफ्लोरा, ये हमारे देश का
3: पॉलिटिकल नेम कुलम है,
2: मित्र गायना।
4: क्या नाम बताया, मेडुला।
2: ये मेडुला, ये देखते हैं हमारे लिए क्या फायदा। हम हमारे एक पेड़ होता है जिसको बीजासार बोलते हैं, उसको हमने बताया कि साहब इसकी लकड़ी को दिया पानी में डुबा के रखोगे और पियोगे आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा सर प्लीज एक शाखा दिलवा दो। उसने दूसरे को बताया, दूसरा साहब एक शाखा दिलवा दो। वो शाखा में तो पेड़ ही निमट गया बेचारा। अब हमने क्या किया, इसके फायदे क्या है, ह्यूमन बीइंग को कोई फायदा नहीं, ऑक्सीजन देता है बस, हम कोई फायदा नहीं। जैसे उसका ज्ञान दिया हमने वो सब काट के, अब वो पूरे सेंचुरी के अंदर आपके मुश्किल से 20 पेड़ बचे हैं, है नहीं पेड़,
3: बहुत बड़े बात है।
2: अब उसको बताने का मैंने कहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसका भी फायदा बताएं उसी के पीछे लग जाते हैं। अब मेरे मिलने वाले हैं तो वो कहेंगे ना, मेरे मिलने वाले से मतलब जिस दिन फॉरेस्ट के मिलने वाले हैं, इतने लोग काम करते हैं, सबसे कहें यार एक डाली एक डाली एक एक डाली में तो हो गया ना काम
4: उसका।
2: वो क्योंकि वो ओमनिवोरस है, सब कुछ खाता है वो। अब सिटी वोरस का क्या हुआ, जितने जैसे आप देखोगे बर्ड पीपल कूलर, इसके ऊपर जो चिड़िया खाती है इसको, आपने देखा कि कहीं पे दीवारों के अंदर बर्ड हुआ हुआ है,
5: समझ रहा हूं मैं आपकी बात।
2: किसने बोया वो चिड़िया ने
3: बोया।
2: कैसे बोया उसने, आप देखो आप बड़ का जो पेड़ है, बड़ के 1 किलो बीज लेके आओ, उसको आप उसमें कितने बीज है, 22 लाख बीज है 1 किलो के अंदर, 22 लाख बीज। आप उसमें नर्सरी करो, उनमें से 22 बीज में नहीं हुएंगे, उगते नहीं हो। क्यों, क्योंकि उसका सीड कोट जो है वो बहुत हार्ड है, लेकिन जब चिड़िया उसको खाती है और वो पेट में जाता है, इंटेस्टाइन के थ्रू जब वो बीज के थ्रू बाहर निकलता है 100% जर्मिनेट होता है। वो यदि किसी पेड़ के ऊपर भी कर देगी ना, वहीं पे पौधा उग जाएगा। तो उनका काम क्या था, पौधे लगाने का काम था चिड़ियाओं का, ये काम नहीं था कि आप गेहूं डालो, गेहूं की खेती थोड़ी करोगे आप। सबसे बड़ी बात, सिर्फ रॉक बीजन क्यों डाल रहे हो, गोरैया खत्म होगी, बुलबुले खत्म होगी, हुदहुद खत्म होगी। पहली बात यह है कि शहद की यदि हम बात कर रहे हैं तो शहद जो मधुमक्खी बनाती है वो किसके लिए बनाती है, क्या आपके लिए बनाती है, अपने बच्चों के लिए बनाती है, उनको खाने दो, पहली बात ठीक है। ये तो चलो मॉरल वाली बात है, हम साइंटिफिक बात करते हैं कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, खा लेना चाहिए। कौन सा खाना चाहिए, जो आप एपिस मेलिफेरा का बनाते हो, जो आप उसकी वो करते हो खेती करते हो, उसका खाना फिर भी एक बार को मैं कहूँगा, लेकिन जो वहाँ पे छत्ता लगा हुआ है, जो हमारा एपिस डॉर्सेटा का लगा हुआ है, एपिस फ्लोरा का लगा हुआ है, जो हमारे छोटी बड़ी आती है, उसमें जब आप उसको छत्ते को तोड़ते हो ना, तो वो आप अटैक करेंगे, मतलब वो आपका

0: ले जाने नहीं देंगे। जो एपिस मेलिफेरा है, जो आप खेती करते हो, तो उसको आप उठाते हो और तो कवर पहन के उसको एक भी उसको आप मधुमक्खी को मार नहीं रहे हो, लेकिन जब आपने छत्ता तोड़ा, वाइल्ड वाले का छत्ता तोड़ा, तो आपने कम से कम अग्रेसिव तो होंगे, ये भी होगी, लेकिन आपने 75,000 मधुमक्खियों को मार दिया। कैसे मारा? मधुमक्खी जब ऐसे छत्ता बनाती है तो मधुमक्खियां नीचे रहती है, बच्चे उसके नीचे है, अंडे उसके नीचे, सब नीचे, और यहाँ पे वो ऊपर की तरफ शहद इकट्ठा करते हैं। जब आप उसको तोड़ के लाते हो और आप इसमें से उनको आप निकाल नहीं सकते, आप उसको जूस क्या काहे का जूस पी रहे हो, बच्चों का, अंडों का, मधुमक्खी का, और रानी मक्खी जो कभी बाहर जाती नहीं है वो हमेशा अंदर रहती है, बाकी मक्खियां बाहर जाएंगे और लेके आएंगे शायद, लेके आ रही है, उन सबको आपने चूके मार दिया। जब आपने मेलिफेरा का किया, जो आप मधुमक्खी पालन करते हो, उसमें आप एक भी मधुमक्खी को नहीं मारते, उसमें से निकालते हो, उनको अलग कर देते हो, उसमें से निकालते हो, तो वो फिर भी एक बार को मानो, जबकि आपने छीना उनका, पर चलो फिर भी है कि आपने मारा तो नहीं, हत्या तो नहीं करी। पर यदि आप जंगल वाला शहद, मैंने तो अपने एरिया में मैंने आदेश निकाल दिया, यदि कोई छत्ता तोड़ेगा तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में केस दर्ज करो और कोर्ट में चालान करो, इसको जेल करो, उसको कोई भी छत्ता नहीं तोड़ेगा। हमने वहां पे सर्वे किया शेरगढ़ सेंचुरी के अंदर, हमारे कम से कम वहां पे 1,000 छत्ते होने चाहिए। जब हमने सर्वे किया वहां पूरा, हमारे पास 150 छत्ते निकले, कितना कम हो गया, क्योंकि हमारी हमारा ध्यान इस पे है, कोई शिकार तो नहीं हो रहा, कोई पेड़ तो नहीं काट रहा, छत्ता तोड़ा तोड़ लिया, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। शहद यानी कि छत्ता तोड़ना एक सीधा क्राइम है, और जैसे मैंने कहा वो तोड़ लिया मैंने, जो मधुमक्खियां 10,000 एक छत्ते के अंदर 10,000 से 75,000 तक मधुमक्खियां रहती है, एंड दे आर ऑल फीमेल्स, मेला कोई नहीं है, एक भी मेल, दे आर ऑल डॉटर्स एंड सिस्टर्स, वो इतनी दूर तक जाती है, वापस लेके आती है, जब वो लौट के आएंगे छत्ता तो है नहीं वहाँ पे, अब वो अकेले नहीं रह सकती, वो किससे गाइडेड होती है, वो जो रानी मक्खी अंदर रहती है, वो फेरोमोन्स छोड़ती है, स्मेल छोड़ती है, वापस कैसे आना,
1: उससे गाइड होती
0: है। यहाँ 10 छत्ते लगा लो, जो मधुमक्खी यहाँ से जाएगी 10 किलोमीटर तक जा सकती है, नॉर्मली 1 किलोमीटर तक जाती है, पर 10 तक जा सकती है, लौट के जब आएगी तो वो कभी कंफ्यूज नहीं होगी दूसरे घर में घुस जाए, अच्छा वाले में जाएगी, क्योंकि उसकी रानी मक्खी जो बैठी हुई है वो उसको स्मेल छोड़ती है मधुमक्खी, और एक चम्मच बनाने के लिए 12 मधुमक्खियों को पूरा जीवन लगाना पड़ता है। हाँ, और आधा किलो यदि शहद बना है तो उसमें पृथ्वी के पूरे 2 चक्कर लगे हैं, इतना इतने किलोमीटर मधुमक्खी चली है, तब जाके वो बनाए 1 किलो शहद। वो कैसे? क्योंकि हम वहाँ पे नंबर बहुत बड़ा है, नंबर बहुत बड़ा है, वो 10,000 75,000 उनकी सबकी में एक एक मधुमक्खी जो 8 किलोमीटर चल रही है, हर एक मधुमक्खी इतने पूरे अर्थ का चक्कर नहीं लगा रही, पर मैंने वो कैलकुलेट किया कि एक 8 किलोमीटर चलती है तो 10,000 कितने चलेगी, 80,000 किलोमीटर चलेगी, और वो 75,000 कितने चलेंगे, इतने किलोमीटर चलेगी, तो 80,000 किलोमीटर चले, यानी 2 चक्कर पृथ्वी के लगा दिए उन्होंने, तब जाके हमें 1 किलो शहद मिला। और हम उसको कैसे वेस्ट करते हैं? अरे यार, हम बहुत सारी चीजें हमारे पास खाने के लिए, सब्जियां बहुत सारी हैं, दालें बहुत सारी हैं, मधुमक्खी पालन केंद्र से ले सकते हो, वो अच्छा है, कि फार्मर्स नर्सरी, उसके अंदर वो फार्मिंग करते हैं अंदर, इसके अंदर वो फंगस उगाते हैं जिसको वो खाते हैं अंदर, क्योंकि बाहर नहीं मिला खाना तो अंदर तो मिलना चाहिए ना उसको, फिर इसके अंदर ही उसके होते हैं नर्सरी, जहाँ वो अपने बच्चों को जो अंडे दे रही है, वो तो रोज का काम है, 40,000 अंडे दे रही है, 36,000 से 40,000 अंडे रोज देती है, और आपने सामने दीमक देखी होगी कितनी छोटी सी होती है, लेकिन जो उसकी रानी जो है उसकी एज बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बाकी तो सब 1 से 1.5 साल में मर जाती है, बदलती रहती है, नए बच्चे पैदा होते रहते हैं, लेकिन जो रानी है वो नहीं मरती है, वो कितने 30 से 50 साल तक जिएगी, और उसकी लंबाई मतलब इतनी बड़ी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी वो जानवर हो जाता है, मतलब जैसे मेरी ये उंगली पर इतना बड़ा होगा, बड़े होते होते इतना बड़ा जाता है, लेकिन उसके पैरों का साइज नहीं बढ़ता, पैर तो वही जो बच्चा था जैसे होते ना
1: बाइक बाल,
0: तो आप ये मानोगे ट्रेन के ऊपर स्कूटर के पहिए लगा दूं तो वो चल तो सकती नहीं, वो तो लेटे रहते
1: हैं।
0: उसमें 3 तरह के जानवर है वहाँ पे, एक वहाँ पे श्रमिक है जो रेगुलर काम करती है, एक वहाँ पे है जो सोल्जर्स है जो अटैक करेंगे, चींटी अटैक कर रही है, कोई अटैक कर रहा है उससे वो लड़ रही है, और एक वहाँ पे राजा और एक वहाँ पे रानी, राजा रानी का काम एक ही है, उनको तो बच्चे देने खाली, वो तो अंडे रोज देती रहती है वो, और बाकी ये उसमें अलग अलग काम बटा हुआ है, इन बच्चों को उठा के ले जाना, अंडों को लेके जाना है, अंडों को नर्सरीज में रखना है, उनको बड़ा करना है, उनको पीपा को खाना देना है, जब वो सेकंड फॉर्म में
1: साम्राज्य बन रहा है
0: पूरा अंदर पूरी लाइफ, और इसके ऊपर हम ह्यूमन बींग ने इसमें पूरा रिसर्च किया है कि कैसे एसी मेंटेन किया जा सकता है बिना एसी लगाए हुए, हमारे वाले एसी लगाए हुए, ऐसी कई बिल्डिंगें बनी है अभी इसके अंदर, क्या कहते हैं अरब कंट्रीज के अंदर, उन्होंने इसकी पूरी साइंस देखी है कि किस तरह से हॉट एयर नीचे जा रही है और ठंडी ऊपर से निकल के आ रही है, तो इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ, अंदर इसको आप काट के देखो ना ट्रांसफर, अंदर पूरी लाइन है।
2: इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी श्री रविशंकर मुंदड़ा एवं श्री पराग टोंगिया ने कहा कि
3: प्रकृति के प्रति आम आदमी को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम हमने बनाया, सीड बॉल वगैरह हम लोगों ने पिछले 15-20 दिन से बना रहे हैं रेगुलर, बड़ी बड़ी कार्यशाला हमने लगा रखी है, हम सब उसमें लगे हुए हैं, अभी भी हमारे 400 से 500 मेंबर यहाँ आए हुए हैं, हम चाहते हैं आम आदमी से जुड़े, प्रकृति को समझे, पौधों को बनाना करना कैसे क्या, कौन सा पौधा लाभदायक है कौन सा हानिकारक है, जैसे सर ने बताया कबूतरों को दाना नहीं देना है, बंदरों को रोटी नहीं देना, ये सब की जानकारी मिली, जागरूकता फैलाना ही हमारा मेन

0: उद्देश्य है और हम इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और आगे से आगे हम इसके लिए तैयार भी रहते हैं। बूंदी में सर ने बोला है कि रामगढ़ आपका बहुत अच्छा है, अब आप उसको जाइए करें, तो सर को हमने बुलाया सर स्पेशली, उनके साथ हम लोग रामगढ़ भ्रमण करेंगे।
1: सीट बॉल्स हमारी 40 शाखाओं के सदस्यों के सहयोग से बनाए, आज उन सीट बॉल्स को थ्रो का आयोजन किया गया है। अनुराग जी भटनागर के सहयोग से ये कार्यक्रम हम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। वन भ्रमण बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि हमारा शहर बहुत पॉल्यूट है, बहुत पॉल्यूशन है, इसलिए हमें पर्यावरण से जुड़ना चाहिए। क्योंकि हम एक पेड़ लगाते हैं, यहाँ पे हम थ्रो करेंगे बहुत पेड़ लगेंगे, साथ ही हमें ऑक्सीजन मिल रही है। वन भ्रमण बहुत आवश्यक है और आज की युवा पीढ़ी को वन भ्रमण जरूर करना चाहिए।
2: वन क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए सहायक वन संरक्षक श्री पंकज कुमार मीणा ने कहा कि
3: यहाँ पर एक रखा है कि सीड बॉल होती है। सीड बॉल से क्या होता है कि जैसे हम जहाँ पर की प्लांटेशन नहीं कर सकते, एक्चुअली यहाँ पर हम पहुँचने रीच नहीं कर सकते, या फिर रेंडमली हम चाहे जैसे काफी सीड इकट्ठे हो जाते हैं, तो सीड्स को यूटिलाइज करना चाहे ना इस तरीके से कैसे यूटिलाइज करें सीड्स को, तो आप भी एक आमजन भी घर पर बैठ कर सीड बॉल बना सकता है और जब भी जहाँ भी जाए जैसे जिस तरह से गुजरे उसको लगे कि मिट्टी है वहाँ पर प्रॉपर मात्रा में, तो वहाँ पर वो फेंक सकता है। मे बी उसकी प्रोबेबिलिटी 50-70% कितनी भी जितनी भी हो, पर जितना हम कुछ कर रहे हैं और वो ये जो टाइम होता है बारिश का, जब बारिश आने वाला होती है उससे पहले करने ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उस टाइम उसको मॉइस्चर मिल जाता है अच्छा खासा, और उसके पास भी जैसे सीड बॉल होती है उसमें मॉइस्चर होता है मिट्टी के अंदर, तो वो भी एक होता है ना कि एक लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है वो उसके अंदर मिट्टी के अंदर, तो उसके पनपने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो उसी को लेके जो भारत विकास परिषद लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम है जो साथ दिया है हमारा, काफी आप देख रहे हो कितनी अच्छी खासी तादाद में लोग आए हैं, तो यही हम चाहते हैं कि पूरा जो है पूरे ये हर एक इंसान है, हर एक इंसान हमारी जिम्मेदारी होती है। हम इतने सीड्स होते हैं जामुन के आगे फूलों जामुन खा रहे हैं लोग, तो जामुन के सीड्स को लें सीड बॉल बनाएं और जा भी जाए फेंके, हम गाड़ी से कहीं घूमने गए कहीं मिट्टी देखे तो ये कोई रोकता नहीं है आपको, भाई पौधे लगाने से कौन रोकेगा आपको, तो ये एक आमजन की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट पर्टिकुलर परिपूर्ण नहीं कर सकता कुछ भी जब तक आमजन भागीदारी नहीं है पेड़ लगाने में और पेड़ काटने से रोकने में भी, दोनों में भागीदारी आमजन की होनी चाहिए। ये तो अवेड़ाबाल जो कि पार्क है, तो हमारे वन प्रोड्यूस रिएक्टर में, तो यहाँ तो जो वन्य जीव वो कैप्टिव है, कैप्टिव के जो तो हमने रखे हुए हैं जो अपने जो एनक्लोजर के अंदर होते हैं, तो उसमें हमारा भी 13 एनक्लोजर है यहाँ पे, जो 13 टाइप के एनिमल हैं उसमें, और अभी भी एनक्लोजर आने वाले हैं जो सेकंड बजट आएगा उसमें लगभग, तो हमारे 23 एनक्लोजर बन जाएंगे और एक एवियरी बनेगी पक्षियों के लिए, तो काफी बढ़िया। और इसमें हम क्या 30% हिस्सा रखते हैं हर ये ग्रीनरी के लिए, बालिका पार्क का नियम होता है, तो ये जो ग्रीनरी है देख पा रहे हो आप, और शायद आप वो वॉस्टॉप जाकर देखिएगा तो वहां से उस एरिया को देखोगे ना आप, और इस एरिया को कंपेयर करेंगे, सेम एरिया है, सेम क्लाइमेट, सेम जो टेरेन भी सेम है, पत्थर पर यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला है, और यहाँ पे कुछ प्लांटेशन हुए जैसे आप जिस लोगों ने किया है, कुछ हमने किया है, कुछ जितने एनजीओ उन्होंने किया है, तो उनके जरिए यहाँ पर लगभग 2 लाख के लगभग पौधे भी हो गए हैं। उनमें मेन रीजन हम लगाए 20-25 हजार पौधे लगाए हैं, पर रीजनरेशन और प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है फॉरेस्ट में, उसकी बदौलत ये सारा फन पाए।
2: सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों के मध्य बड़ी तादाद में बच्चे और युवा साथी भी मौजूद रहे। इस मौके पर युवा पर्यावरण प्रेमी श्री ललित शर्मा ने कहा कि
4: और आज हम बायोलॉजिकल पार्क अबेड़ा महल आए हुए थे, यहाँ पे एक सेशन रखा गया था आज सीड बॉल्स का, जगह जगह सीड बॉल अपन थ्रो करें या जर्मिन जिससे कि वो सीड जनरेट हो, जैसे कि अभी जर्मिनेट हो, जैसे कि अभी अपना मॉनसून सीजन आने वाला है तो उसमें क्लाइमेट भी मतलब काफी सपोर्ट करता है कोई भी सीड जर्मिनेशन करने के लिए, तो यहाँ पे मतलब यूथ का क्या मैं देख रहा हूँ कि जितना ज्यादा यूथ कनेक्ट होगा, बच्चे जितना ज्यादा सीखेंगे नेचर क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे सर ने आज बताया कि चींटियों को हमें आटा नहीं डालना चाहिए, उसका फायदे से ज्यादा नुकसान है, हम पूरी की पूरी उनकी जितना भी उनका ग्रुप है जो भी एक जगह वो रह रही है पूरा उनका एक तरह से गांव अपन मान के चले उसको खत्म कर देते हैं आटा जहां भी डालते हैं। सेम ऐसा ही मधुमक्खियों के बारे में सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मधुमक्खियों का जो हम सोच रहे हैं कि ये हनी हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो प्रॉपर उसकी फार्मिंग कर रहे हैं जहाँ पे उसमें वो किसी मधुमक्खी को मार नहीं रहे, लेकिन हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं छत्ता तोड़ के पूरा का पूरा उनका नष्ट ही कर दे रहे हैं
5: जी।
4: तो इसमें बच्चों को और जितना भी यूथ है सबको आना चाहिए ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, अपने अनुराग सर की जो नॉलेज है जो छोटे छोटे सेशन वो करते रहते हैं संडे को, बहुत अच्छे सेशन है सबको ज्वाइन करने।
2: वन भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग संदर्भ में पर्यावरण प्रेमियों को सहायक वन संरक्षक श्री प्रेम सिंह भी जानकारी दे रहे थे।

0: इस अवसर पर उन्होंने बताया कि
1: ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो कॉमन मास है उसको अवेयर किया जाए, बताया जाए कि जो वाइल्ड लाइफ को लेके क्या मिथ्स हैं वो समझाए जाए
2: जी।
1: और इसके अलावा हम आज प्लांटेशन करा रहे हैं, सीड बॉल स्विंग करा रहे हैं और ये 3 घंटे का हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो सके। प्लस ये जो लोग यहाँ पे आए ये वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, वाइल्ड लाइफ लवर हैं, ये ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। प्लस इनका जो इंटरेस्ट है इसको बनाए रखने के लिए हमने आज ही कोशिश की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयर किया जाए। और इसके बाद जितने इस तरह के हम इवेंट रखते हैं उसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं और अब ये लोग यहाँ से जाके इस आज जो मैसेज लेके जाएंगे, जो इनकी आज लर्निंग होगी, ये जगह जगह अपने प्लेटफॉर्म्स पे सोसाइटी में इसको अवेयर करेंगे। अभी हम यहाँ पे नगर वन डेवलप कर रहे हैं जो अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम इसको आने वाले टाइम में पूरा इसकी लुक चेंज हो जाएगी और इस टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा।
0: कोटा के वन्य जीव उपवन संरक्षक श्री अनुराग भटनागर ने इस वन भ्रमण कार्यक्रम के पश्चात एक अपील भी की। उन्होंने कहा कि
3: बिल्कुल, आज जो हम ये वन महोत्सव कर रहे हैं इसके पीछे मेन उद्देश्य हमारा है जागरूकता। देखिए आज हम यहाँ पे सीड बॉल भी डाल रहे हैं, हम यहाँ वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मेन जो उद्देश्य है वो है कि एक जन साधारण के अंदर और खास तौर से जो हमारा न्यू जनरेशन है उसके अंदर एक सेंसिटाइजेशन आए, उनके अंदर एक चिंकारी हो कि भाई हमें वन विभाग, हमें वनों को कैसे बचाना है, पर्यावरण को कैसे बचाना है। आज के जो बच्चे हैं उनको ये नहीं, इवन बच्चे की क्या बात करें, बड़ों की भी बात करें कि जंगल के अंदर हमारे देश के कौन कौन से पौधे हैं, हमारे यहाँ 2625 तरह की इंडिजिनस ट्रीज है हमारे यहाँ। पूरे यूरोप के अंदर आप जाएंगे तो आपको 500 पौधे मिलेंगे जो इंडिजिनस है उनके यहाँ, लेकिन हमें हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी 26 पेड़ों के नाम बताने में बहुत परेशानी होगी। हमें नाम किसके पता होते हैं, हमें आम का नाम पता है, वो भी आम यदि लगा है तो हम उसको पहचान पाएंगे, उसके बराबर में अशोक का पेड़ खड़ा कर देंगे तो हम पहचानने में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि और हमारा पर्पज यह है इस तरह की कार्यशालाओं से, इस तरह की जो हम ये ट्रैकिंग करा रहे हैं कि बच्चों में और बड़ों में प्रकृति के प्रति एक जागरूकता आए, कितने तरह के हमारे पेड़ हैं, हमारे धौ का पेड़ कैसा होता है, बहेड़ा का पेड़ कैसा होता है, अर्जुन का पेड़ कैसा होता है, वरुण का, मोखा का, अलग अलग तरह के जो पेड़ हैं वो हमारे देश के पेड़ हैं, हमारे 10,000 सालों से वो यहाँ पे उग रहे हैं, उनके बारे में जाने और उनके साथ जब आप रहेंगे, चिड़ियाओं के साथ आप रहेंगे, भले आप पूरे सप्ताह के अंदर 1 घंटा ही बिताएं, 2 घंटे बिताएं, तो आप देखेंगे कि बच्चों का जो फोकसिंग पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, वो इम्प्रूव होगा। जब आप बर्ड वॉचिंग करते हैं, एक बर्ड यहाँ से वहां उड़ के जाती है, वहां से उड़ के जाती है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन जब वो आप देखेंगे कि जब वो जंगल के अंदर जाते हैं और बर्ड वॉचिंग करते हैं तो उनको पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, तो इट क्रिएट्स कंसंट्रेशन, इट गिव्स देम फोकस। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा ये उद्देश्य है, पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में जाके हम प्रकृति से जोड़ें उनको। और पेरेंट्स या अभिभावकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो हर सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है तो उनको मॉल्स में ले जाने की बजाय या सिटीज में घुमाने की बजाय उनको जंगल में लेके आए, नेचर के साथ बिठाए, एक पेड़ को गले लगा के देखें आपको कितना मजा आएगा उसके अंदर, एक बर्ड को आप देखें ध्यान से उसको कितना अच्छा लगता है।
0: एक बीज के संकल्प के साथ एक सुखद और हरित भविष्य के निर्माण का स्वप्न यकीनन हरित कोटा, हरित प्रदेश और हरित देश की संकल्पना तैयार करता है। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस रेडियो रिपोर्ट में प्रस्तुति सहयोग था अभिषेक तिवारी का, प्रस्तुतकर्ता श्री हिमांशु नामा।

अभी आप सुन रहे थे वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ドニアル系 CD1 0 3

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी थोड़ी सी नचा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघड़, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल

0: सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की

0: नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
0: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
0: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 kHz पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत और फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म पारस मणि से, आवाज लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफी की। गीत है असद भोपाली का और संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम सरफरोश। गीत में आवाज जगजीत सिंह की, गीत लिखा निदा फाजली ने और संगीत दिया जतिन ललित ने।

0: अंतर्मन की।
1: आ गया सैलरी? नहीं झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमिर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
8: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
7: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबूराज में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होमोर्ज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होमोर्ज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कोटपुतली बहरोड के मुंडावर में 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने शाहजहांपुर में ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए देशवासियों का सपना पूरा किया है। उन्होंने यमुना जल के ऐतिहासिक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने वहां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है या नहीं। भारत में डिजिटल कानूनों के तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था।

0: जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज संपन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवाभाव को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा।
1: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे, ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
0: चिंतन शिविर में देश भर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जनसुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर ले जाना है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना हृदय, शरीर और मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में सहायक है। मंत्री ने साइकिल चलाने के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों का उल्लेख किया। उन्होंने इसे शहरों में प्रदूषण और यातायात की समस्या का समाधान बताया। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,000 से अधिक श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि लगभग 2,000 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालताल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सेना के ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस के बीच टक्कर में एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। यह हादसा सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में 22LGW के पास हुआ। गंभीर घायलों को तत्काल सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में जहां एक और कई जिले मॉनसून की बारिश से तर हो रहे हैं, वहीं कई जिलों को बरसात का इंतजार है। राजधानी जयपुर में सुबह से चल रही बादलों की लुका छिपी के बाद दोपहर में कई जगह तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। सवाई माधोपुर में सुबह झमाझम बरसात हुई। हनुमानगढ़ में भी जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई। पाली और आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ फसल की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुर में शाम को हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। उधर बालोतरा और सिरोही जिले में सुबह से उमस और गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों में आगामी 5-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कल से भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज लगभग सभी संभाग

0: की जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों का आना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पक्षियों के आकर्षक समूह पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं।
1: केवलादेव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर शैवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की गई। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां की थी। दो पारियों में हुई ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। सवाईमाधोपुर जिले में 35 और भीलवाड़ा जिले में 41 परीक्षा केन्द्रों पर ये परीक्षा रखी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। अब राज्य में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इससे राजधानी जयपुर में यातायात सुगम होगा और लोगों का समय बच सकेगा। 41 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ेगा, जिससे प्रहलादपुरा से सीकर रोड स्थित टोड़ी तक का सफर आसान होगा। इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेंगे। इस रूट को ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है। इसका पहला हिस्सा पिंजरा पोल गौशाला तक बनेगा और दूसरा पिंजरा पोल से जवाहर सर्कल होते हुए एयरपोर्ट तक का 3 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसके साथ ही फेज 1 और फेज 2 को जोड़ने के लिए खासा कोठी में नया इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को एक नई गति देगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद भी किया तथा नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। हाल ही में राजधानी में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बन रही है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधि

0: प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। समारोह का समापन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। सहकार सप्ताह के तहत जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बीते दिनों जिले में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में मनाए जाने वाला डॉक्टर्स डे राजधानी में समारोह पूर्वक मनाया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर्स ने निस्वार्थ सेवा की शपथ ली। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले आज री खास खबरां। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रुपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राजमाए विधि मंत्रालय री कानी सु 2 दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव अरचिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। और राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सु तरबतर, आज घणकर जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट। समाचारां रे साथे मैं संगीता शर्मा और अबे समाचार विगतवार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्यां खातिर 25,000 करोड़ रुपयारी मुख्य सहायता रकम जारी करी। वणा 1 जुलाई सु इन अभियान रे सफलतापूर्वक लागू होने माते खुशी जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत रकम जारी करने रे पाछे श्री सिंह सगड़ा राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशां रा ग्रामीण विकास मंत्रियां साथे वीबीजी रामजी योजना मारे कार्यान्वयन री समीक्षा भी करी। वणा कयो के आज जारी करी जी पहली किस्त रो लखस ओ पक्को करनो है के राज्यां रे कने पुख्ता रकम होवे ताकि मजूरी रो भुगतान 15 दिना माए करयो जा सके। वणा कयो के मनरेगा ने लागू होने माए 3 बरस सु 32 रो बखत लाग्यो हो जदे के विकसित भारत जी राम जी ने पूरे देश माए सिर्फ 1 दिन माए लागू कर दियो गयो।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान कयो के वीबीजी रामजी योजना रे तहत मजदूरी दरामाए औसतन लगे टके 10% री बढ़ोतरी करी जी है। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ओ फैसलो पश्चिम एशिया संघर्ष माए युद्ध विराम रे पाछे होरमुज जल डमरू मध्य सु प्राकृतिक गैस री आपूर्ति फेरू होने रे पाछे करयो गयो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

0: माए कयो है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 माए बदलाव करो गयो है। इन बदलाव रे तहत वहां खास आपातकालीन प्रावधाना ने हटा दियो गयो है, जिनके तहत सरकार ने देश माए उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी रे आवंटन माए प्राथमिकता देने री इजाजत ही। हॉर्मुज जल डमरू मध्य सू एलएनजी री खेप माए रुकावट आने रे पाछे इन बरस मार्च माए आवश्यक वस्तु अधिनियम रे तहत ओ आपातकालीन हुकुम जारी करो गयो हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपुतली बहरोड रे मुंडावर माए 24 करोड़ रूपया रे विकास कामारो उद्घाटन करो। वणा शाहजहांपुर माए ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन रो लोकार्पण भी करो। इन मौके माथे वणा कयो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले राजस्थान ने ऊर्जा खेतर माए बड़ी सौगात देता हुआ देशवासियां रो ओ सपनो पूरो करो है। वणा यमुना जल रे ऐतिहासिक समझौते रो जिक्र करता थका कयो के इनसू प्रदेश रे सूखा प्रभावित खेतरा ताई पानी पहुंचाने रो मार्ग खुल्यो है। केंद्रीय मंत्री वठे न्यारा न्यारा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम माए भी भाग लियो। केंद्र सरकार सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम माथे फीस वाला विज्ञापना माए बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री रे प्रसार ने लेर मेटा ने कड़ी चेतावनी जारी करी है। सरकार इंस्टाग्राम ने एड़ी विषय वस्तु ने बधावो देवन और इंडरी पहुंच ने सोरो बनावन वाला सगला विज्ञापना और सामग्री ने बंद करने रो हुकुम दियो है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटा सू 7 दिनारे माए स्पष्टीकरण मांग्यो है। सरकार इन बातरी समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म भारत रे मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशारो अनुपालन करो है या नहीं। भारत माए डिजिटल कानूना रे तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री रो वितरण एक अपराध है। इनसू पहले मंत्रालय वहां रिपोर्टारो संज्ञान लियो हो जिका माए कयो गयो हो कि इंस्टाग्राम माथे कुछ एक आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जा रही है जिको बाल यौन शोषण ने बढ़ावो देवे है और अहलकारा ने मेटासू जवाब मांगने रा हुक्म जारी करया है। ऐ खबर आप आकाशवाणी रे जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रहा हो। सिरोही जिलेरा आबू राजरा ज्ञान सरोवर माए विधि और न्याय मंत्रालय री कानीसू 2 दिन रो रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज पूरो व्यो। समापन सत्र माए संबोधित करता थका केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो के एड़ा शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास रे माध्यम सू कार्य कुशलता सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने नूवी ऊर्जा देवेला। वणा कयो के ए शिविर विकसित भारत रा संकल्प ने साकार करण माए महती भूमिका निभाने खातिर सगड़ा ने संकल्पित भी करे। श्री मेघवाल कयो के शिविर माए मंथन रे पाछे तैयार करियो गयो घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार ने तेज करेला।
1: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेज के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
0: चिंतन शिविर माए देश भर सू आया विधि विशेषज्ञ न्यायिक अहलकारा और मंत्रालय रा मोटा अहलकार न्यायिक सुधारा तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था पारदर्शिता और जनसुलभ न्याय जड़ा मुद्दा माथे न्यारा न्यारा सत्रा माए चर्चा करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नवी दिल्ली माए राखी जा फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रा 80वां संस्करण माए भाग लियो। इन अभियान रो लखस लोगा रे व्यवहार माए बदलाव लाणो और वाने 32 सक्रिय जीवन शैली री कानी ले जानो है। मीडिया सू बात करता थका केंद्रीय मंत्री कयो के साइकिल चलाणो हृदय शरीर और मन ने स्वस्थ और तंदुरुस्त राखने माए सहायक है। श्री मांडविया साइकिल चलाने रा न्यारा न्यारा स्वास्थ्य लाभा रो भी जिक्र करो। वणा इनने शहरा माए प्रदूषण और यातायात्री समस्या रो समाधान भी बतायो। श्री गंगानगर जिले रा सूरतगढ़ खेतर माए आज सुवारे राष्ट्रीय राजमार्ग 62 माथे सेना रे ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस रे बीचे टक्कर माए एम्बुलेंस माए सवार 3 जनारी मौके माथे ही मौत वेगी। हादसा माए 2 जना गंभीर रूप सू घायल वेग्या। हादसा रे पाछे हाईवे माथे कुछ बखत खातिर यातायात प्रभावित रियो। ओ हादसो सूरतगढ़ सदर थाना खेतर माए 22 LGW रे कन्हव्यो। गंभीर घायला ने तुरंत सूरतगढ़ रे राजकीय सफाखाना पहुंचायो गयो। और अब मौसम प्रदेश माए जठे एक कानी कई जिला मानसून री बिरखा सू तर हो रिया है वठी।

0: दूजी कानी कई जिला बरसात री उड़ीक कर रिया है। राजधानी जयपुर माए सुमारे सू चाल री बादला री लुका छुपी रे पाछे दोपहरा माए कई जगह तेज और कठी कठी हल्की बिरखा हुई। सवाई माधोपुर माए सुमारे झमाझम बरसात हुई। वठीने हनुमानगढ़ माए भी जिला मुख्यालय समेत भादरा संगरिया और पल्लू खेतर माए तेज बिरखा दर्ज करी जी। पाली और आसे पासे रा खेतर माए चोखी बिरखा होने सू काश्तकार खरीफ फसल री बुआई री तैयारियां शुरू कर दी है। उदयपुर माए सिंजा हुई मूसलाधार बिरखा सू शहर रा कई इलाका माए पानी भर गयो। वठीने बालोतरा और सिरोही जिला माए सुमारे सू उमस और गर्मी सू जनजीवन घणो प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब राज्य रा पूर्वी भागा माए आवता 5-6 दिना माए मॉनसून सक्रिय रहने और घनकर थोड़ा माथे हल्की सू मध्यम बिरखा और कठी कठी भारी बिरखा री आस है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान माए काले सू भारी बरसात री गतिविधियां माए और बढ़ोतरी हो सके है। आज लगे टके सगड़ा संभागा रा जिला माए तेज बिरखा रो अलर्ट है। भरतपुर रा विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान माए प्रवासी परिंदा ने देखने खातिर आ दिना घनी तादाद माए पंछी प्रेमिया रो आणो जारी है। माणा खबर नवीस बतायो के पंछियां रा आकर्षक समूह सैलानिया ने रोमांचित कर रिया है।
1: केवला देव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर शैवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: अमरनाथ यात्रा रा पहला दो दिना माए 32,313 श्रद्धालु पवित्र गुफा मिंदर माए दर्शन करया। इन बीचे श्रद्धालुआ रो चौथो जत्थो आज सुमारे जमूरा भगवती नगर निवासू यात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रे बीचे रवाना हुआ। इन जत्थे माए 291 वाहना माए 6,731 श्रद्धालु भेड़ा है। इन माए सू 4,032 श्रद्धालु 139 वाहना माए पारंपरिक पहलगांव मार्ग सू जा रिया है, जबकि लगे टके 2,000 श्रद्धालु 152 वाहना माए बालटाल मार्ग री तरफ सू जा रिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री कानीसू राखी जी लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर माए दो पारियां माए हुई। परीक्षा रे सफल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन खातिर प्रशासन सगली तैयारियां करी ही। दो पारियां माए राखी जी आ परीक्षा सुमारे 9:30 बजे सू दोपहरा 12:30 बजे ताई और दूजी पारी माए दोपहरा 3 बजे सू सिंजा 6 बजे ताई हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भारत माए लीवर री बीमारी और टाइप 2 मधुमेह सू निपटण रे खातिर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने रो हेलो करियो है। नवी दिल्ली माए लीवर एंड मेटाबॉलिज डिजीज नेटवर्क री तीजी वर्षगांठ माए डॉक्टर सिंह कयो के ए रोग अबे पहली री तुलना माए कम उम्र रे लोगा माए भी देखा जा रहा है। वणा कयो के देश री जेनेटिक बनावट पेट रे आसे पासे चर्बी री 32 समस्या और भारतीयां री शारीरिक बनावट रे कारण लोगा माए मधुमेह फैटी लीवर और हृदय रोग रो खतरो बत्ती है। डॉक्टर सिंह कयो के वैज्ञानिक तरक्की रे साथ है बड़े पैमाने माथे जन जागरूकता और व्यवहार माए बदलाव सू इन चुनौती रो निपटो जा सके है। और आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुनो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रुपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सू आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राज माए विधि मंत्रालय री कानीसू दो दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। अर राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सू तरबतर आज घनकर जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट। इंडे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठाई पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर आप सुन रहे हैं हाड़ौती अंचल की अपनी आवाज आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल।

राम राम जी, राम राम। चौपाल सुन वाला सिंधे करसान भयार बिना के तही शरण भाई की घनी घनी राम राम। भाई बनाऊ खेती बाड़ी से जुड़ियो, अपना घर परिवार की बातों से जुड़ियो, यो जो कार्यक्रम छ चौपाल, यो रोजना ही शाम के 7 बजे आपका ताई रेडियो का माध्यम सु, एक साथ साथ ही आजकल तो मोबाइल ऐप का माध्यम सु और FM पर भी सुनवा मिल रहे छे। तो अब तो सुलभता आसान होगी, ज़्यादा सुलभ होगी आपन सुनवा को, तो जरूर आपन ने सुननी चाहिए और इमें जो जानकारियाँ छे वो जानकारियाँ को लाभ लेनी चाहिए। कार्यक्रम ने जब भी आप सुनो तो आपसे एक ही गुजारिश है कि कागज पेन भी साथ में लेर बैठो, तो ऊँचू कहीं से आपने तई यहाँ चौपाल का माध्यम से जो भी जानकारियाँ मिले उनके तई आप हाथी में कागज पर मांड सका और फिर वो आगे अपना काम आ सके। जो भाई बहन ये कार्यक्रम न कोई कारण से न सुन पाए हो तो वहीं भी आप बतावा कि भाई खालका चौपाल में कई बातें हुई थी, कई कई विषय पर जानकारियाँ आई, की तरीका की बात अपने तई कोई ज्ञान मिलियो तो कसो मिलियो। चौपाल में आज आपन बात कर रहे हैं सामाजिक कृषि वानिकी के बारे में। भैया कृषि वानिकी यानी खेती बाड़ी और वानिकी यानी वन, दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई बात है या एक साथ साथ सामाजिक शब्द जुड़े हुए को मतलब समाज से जुड़ी हुई बात भी है। अब पेड़ पौधा ही कृषि में और वन क्षेत्र में आओ छे, तो खेपा को मतलब ये हो गयो कि जब अपना आसपास पेड़ पौधा ने देखा चा तो वह सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी दोनों के अंतर्गत आओ चे। सामाजिक वानिकी जो चे उनको अर्थ यो हो गयो कि यह जो वन के बाहर को जो पर्यावरण चे यानी कि समाज के जो आसपास को चे या जो अपना गाँव का आसपास को क्षेत्र चे वहाँ पर जो पेड़ पौधा को विकास हो चे उनके ताई आपन सामाजिक वानिकी के अंतर्गत ले चा और वहाँ को जो प्रबंधन चे वो आपन ने खुद प्रयास करके करनो रहे चे। एक मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और पारंपरिक जो वन चे वहाँ के ऊपर दबाव कम करके वहाँ को विकसित कर बोल रहे चे। ये जो सामाजिक वन जो आपन पैदा कर रहे छा या बढ़ा रहे छा ये अपना गांव की जो साझा भूमि छे या गांव का आसपास जो बंजर भूमि पड़ी छे वहाँ पर वृक्षारोपण करके इकताई करियो जाओ छे ताकि गांव से जुड़ी हुई जो भी जरूरत छे गांव का लोग बगा की जो वन क्षेत्र से जुड़ी हुई आवश्यकता छे उनकी पूर्ति वो स्थान से हो जाओ। जैसे लकड़ी छे, चारो या छोटी घर में जो घर बनावा के लिए लकड़ी की जरूरत है तो वहाँ सब यहाँ के लेकर गांव का आसपास ही वन क्षेत्र आशो आपन तैयार करा जो गांव का लेकर हाथी वात काम आ जाओ ताकि जो अपना जो पारंपरिक वंच जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वंच वो बर्बाद न हो वो बचा रहे। अब इसके अलावा जो दूसरी वानिकी जो आपन ने बात करी कृषि वानिकी या रह चे कि भाई यह चे जो चे यह पारंपरिक वन चे एक साथ कई प्रकार का जो पेड़ यहाँ उगे चे क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से उगे चे और यो जो क्षेत्र चे यो अगर न हो तो आपने ताई बहुत सारी चीज़ों को अभाव महसूस हो जाओगे। आपने ताई प्राणवायु ऑक्सीजन जो चे वो वहाँ से मिल रही चे एक साथ साथ ही कई प्रकार का दुर्लभ जो पेड़ चे या जो वनस्पतियाँ चे वो अपना आसपास का क्षेत्र आंसू तो खत्म होती जा रही है लेकिन वो जगह पर प्राकृतिक वनाम वो उपलब्ध हो सके चे। तो जो पर्यावरण को जो

पारिस्थितिक संतुलन छे मुख्य ताई बनाए रखबा के लेकर इनकी बहुत महती आवश्यकता छे। इनके साथ साथ ही किसाना की आय बढ़ावा के लेकर मिट्टी की उर्वरता शक्ति उसमें सुधार करवा के लेकर और जलवायु परिवर्तन करवा के लेकर भी कृषि वानिकी की बहुत आवश्यकता छे भाई बनाओ। तो आपने अपनी जो खेती बाड़ी छे इनके साथ साथ ये तरीका का काम भी करना छे ताकि आपनो जो पर्यावरण छे उनको संतुलन बनो रहे और आपनो जो खुद को जीवन और आगे आबाड़ी जो अपनी पीढ़ियां छे अपनी जो संतियां छे वहां का।

0: काकड़ का भिरू लाडला मैं तो तनई मनावा आई रे। कितनी बढ़िया बात जो छे ये लोक भजन का माध्यम से आपने सुनी छे रामस्वरूप और सत्या का गाय स्वर में।
1: लो भाई बहनों टाइम हो रही थी जानकारी लेवा को जानकारी तो अपन रोजाना ही खूब सारी ले अलग अलग विषय पर जो अपने खेती बाड़ी में अपने सहयोगी साबित हो छे। कभी कभी तो विशेषज्ञ अपना चौपाल में आओ छे और कभी अपन भी क्षेत्र में चाल और बातचीत करा छा अपना कृषि विशेषज्ञ आसो। ये कड़ी में ही आज पहुंचे छा कृषि महाविद्यालय कोटा। यहाँ आपसे बात कर पा के लेख साथ में छे डॉक्टर सत्यनारायण मीणा जी। आप यहाँ सस्य विज्ञान शाखा में सह आचार्य पद पर कार्यरत छे। तो आज डॉक्टर साहब से अपन बात करेंगे कि ई पखवाड़े कहीं कहीं कृषि कार्य करनी चाहिए और वहां में कहीं कहीं सावधानी बरतनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत। राम राम साहब।
2: राम राम किसान भाइयों।
1: डॉक्टर साहब आपने देख रहे थे कि आपने हर चीज में नवाचार करा छा नई नई तकनीका को प्रयोग करा छा अच्छी उन्नत किस्म ले छा खूब मेहनत के साथ खेती करा छा फिर भी कहीं ना कहीं कोई न कोई अगर गलती रह जावे तो अपनी फसल अपने तय भरपूर उत्पादन न दे पावे वह गुणवत्ता अपने फसल में ना पावे जिकी बाजार में मांग छे। तो अगर अपन सही समय पर सही काम करा तो हो सके ये सारी समस्या से अपन छुटकारो पा सका छा। तो आभार यो जो जुलाई माह को प्रथम पखवाड़ो चाल रो छे इमा अपना किसान भाई कहीं कहीं

0: ऐसा कृषि कार्य करने चाहिए जिनकी वजह से वहाँ की जो फसल है वहाँ का गुणवत्ता पूर्वक उत्पादन दे सके।
1: किसान भाई हो जैसे अपने पतो चाह रहे हो भाई इस साल मानसून ऐसा थोड़ा थोड़ा कमजोर छे, जैसे अपना कोटा बारा जिला या झालावाड़ बूंदी यहाँ में कुछ कुछ जगह पर तो बढ़िया बारिश होगी, आज 15 दिन पहले भी बारिश हो गई थी,
0: बिल्कुल सही
1: बात। वहाँ ना बुआई करा दी जैसे सोयाबीन की भी कर दी, कोई ने धान की पोत तैयार कर रखी छे, पर जैसे कुछ जगह पर बारिश न हुई तो अब किसान भाई अगर मान लो जहाँ बुआई करनी चाहे अपन ना तो पहले तो उचित फसल को चुनाव करा, जैसे अपन धान की सोच रहे थे धान की बजाय अपन सोयाबीन में आ जावा मक्का में आ जावा।
0: अच्छा।
1: अगर मान लो जिस जगह पर भाई धान की या सोयाबीन और मक्का न हो तो उड़द मूंग में आ जावा, क्योंकि अगर अब जैसे अगर कुछ कुछ जगह बारिश होगी वहां ना बढ़िया बात है, जैसे सोयाबीन में 15-15, 20-20 धन की हो रही है, धान की पौध भी 20-25 धन की यानी लगाबा की टर्म पर आ रही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अब यू किसान भाई जैसे मान लो सोयाबीन था कि 20-25 धन की होगी तो हल्की सी निराई गुड़ाई या खरपतवार नियंत्रण को उचित समय आ गयो,
0: बिल्कुल।
1: अगर यो टर्म आप चूक जाऊंगा और फिर बारिश लागी उसके बाद खरपतवार नियंत्रण न कर पाऊंगा सोयाबीन, और जैसे यहाँ बार मान लो था धान से तो धान के लेकर अब अपन वो तैयार होगी लगा बाकी से तो बढ़िया खेत ना तैयार कर लियो, जुताई करा करोर तो भाई वो अगर जुताई भी हिसाब से था कि वो कचरो न रखता भी
0: जी।
1: तो क्योंकि अगर एक बार लगाया बाद में फिर कचरो खत्म ना हो आप से,
0: साची बात।
1: और अगर मान लो जिस जगह पानी की कमी छ तो धान वो डायरेक्ट सीधी बुआई कर उसे भी कर सके अपन,
0: बिल्कुल
1: भाई जरूरी कोई ना भाई गरड़ मचा रही अपन धान बवा
0: सीधी बुआई भी हो सके,
1: सीधी बुआई भी हो
0: सके। डॉक्टर साहब जैसे आपने किए कि भाई मानसून थोड़ा सो लेट हो रहे छे, अब जैसे कोई ना विचार कर रहा है कि जो भाई मन तो सोयाबीन लगानी छे या मन धान लगानी छे और उनकी जो किस्म वाने सोच रखी छे तो कहीं जब मानसून लेट हो रहे जो अपन बुआई में अगर देरी कर रहे जा तो कहीं किस्मा में परिवर्तन करनी पड़ोगे माना।
1: हाँ किसान भाई अगर मान लो अपन किस्मा में परिवर्तन न करा, जैसे मान लो सोयाबीन की मान लो कोई तो 110 की 115 दन की आउच, जैसे आपने 95-60 जैस 95-60
0: जी
1: जैस 20-29 ये जो छोटी दना की अच्छा किस्मा तो यह ना लेबो ज्यादा ठीक रहो जनक बुआई नकरी वाला,
0: बिल्कुल
1: भाई जाना कर दी तो काई उन्हें तो ध्यान रखना चाहिए, जनक नकरी तो वो कम दना की किस्मा को चयन करी बुआई कर।
0: अच्छा।
1: और बुआई कर बासु पहले किसान भाई हो खेत की बढ़िया तैयारी कर, बीज उपचारित किया बगैर सोयाबीन भी न बोनी उड़द मूंग भी न बोना, जैसे अपन अगर धान की पौध भी तैयार कर रहे ना पौध में बुआई करवा सो पहले नर्सरी में जब लगावा लगा जब भी आपने उपचारित करनी पड़ेगा।
0: तो जैसे मतलब ज्यादातर तो बीज उपचारित अपना किसान भाई कर जाए, लेकिन अगर कोई न भी कर रहे हो तो एक बार मांगते हैं थोड़ा सा बीज उपचार को जो तरीको है ना वो आप बता दो कि तरीका से मानो उपचारित करनी चाहो
1: किसान भाई हो, जैसे अपना दलहनी किसी भी फसल हो जैसे सोयाबीन हो उड़द मूंग अरहर जो भी राइजो भी हो गया कीटनाशक होगी और फफूंद नाशक होगी।
0: अच्छा, अच्छा।
1: अब यहाँ को एक क्रम रहे किसान भाई हूँ, अगर आपने राइजो में पहले कर लियो और कीटनाशक बाद में कर दियो तो राइजो में तो मर गया।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जो जीवाणु से जेतो तो FIR को मतलब पहले फफूंद नाशक फिर आईसु इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक उसके बाद में राइजोबियम या कल्चर कसो भी जीवाणु कल्चर जैसे PSB भी हो सके ट्राइकोड्रमा भी हो सके इन आखिरी में करनी चाहिए किसान भाई।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे मान लो आपने बीजोपचार करियो तो कतरा दिन पाचे आपन उकताई बुआई कर सका चा?
1: नहीं किसान भाई ज्यादातर तो यूं जैसे मान लो आपने जैसे आज बुआई कर तो बीज उपचारित हिसाब से करा जाए भाई घंटा दो घंटा तय उन्हें छाया में सुकार आते बुआई कर सके।
0: अच्छा।
1: यूं कोई ना भाई दो चार दिन पहले कर भाई अतनो उस नुकसान नहीं होगा
0: जी, बिल्कुल जो, पूछ रहे
1: जो कीटनाशक या फफूंद नाशक या जो जीवाणु काम करोगे ना वो धीरे धीरे ऐसे खत्म बाहरी पड़े पड़े खत्म हो जाओगे।
0: तो मतलब जब अपन बुआई करा तो अपन फिर यह देख ले भाई मौसम साफ छे और फिर आते वहां तो उपचारित करके और दो से चार घंटा के बीच में बुआई कर दिया
1: छाया में सुकार बुआई कर
0: दिया है ना। और जैसे अब चूंकि लेट हो रहा है तो कहीं बीज की मात्रा को भी कोई अंतर करना चाहिए
1: ना किसान भाई हो अगर जैसे हमारा आज तो ज्यादा लेट कोई नहीं जैसे सोयाबीन में भी अपन 15 जुलाई तक कर ही दे सो अगर ई बीच में भी भाई थोड़ा सो अपन ला रहे भाई मानसून और लेट हो रहे थे तो थोड़ी सी क्योंकि अब जब कम दन में पकानी रहेगी तो बीज दर थोड़ी बढ़ानी रहेगी
0: बढ़ानी पड़ेगी
1: 10-20% बीज दर बढ़ानी रहेगी क्योंकि उस वो जो ये रह जाए ना पौधा की वेजिटेटिव ग्रोथ है उनकी जो अवस्था रहती है वो कंप्लीट ना होगी तो थोड़ी सी डेंसिटी रहेगी तो ठीक रहेगा अपन उत्पादन ठीक मतलब।
0: ठीक छे, बिल्कुल अच्छी बात छे। अच्छा, बुआई का तरीका में भी कोई परिवर्तन?

0: करनोरज
1: जैसे आप मैं किसान भाई हूँ, जैसे आपने ज्यादातर तो सोयाबीन फ्लैट बेड में करे छा सिंपल ये कर तो आजकल वो फर एंड रिज मेथड मारे एक वो आउ आजकल जैसे
0: डोले में
1: और डोली में भी तो अगर ज्यादा बारिश हो जाओ ना तो पानी भरो को ना तो ऑटोमेटिक ही जल निकास की उचित व्यवस्था हो जाओ
0: हाँ, और पौधा के भी नमी बनी रहेगी तो बड़वाम सहायक
1: रहोगे
0: ना, बड़वार अच्छी होगी उनकी भी पौधा की भी। अच्छा धान की फसल की जहाँ अपन बात करा तो धान की फसल में आजकल सुनवा अब कई किसान भाई जो सूखी बुआई भी कर रहे थे तो कहीं हुआ मतलब धान की फसल के लेकर उपयुक्त छे
1: नहीं? देखो किसान भाई भाई जल तो जब कमी छे जी जगह पर तो उमा कोई दिक्कत कोई ना, उमा सिर्फ यूं ध्यान रखना और अपना खरपतवार ज्यादा हो जाए।
0: अच्छा
1: तो खरपतवार प्रबंधन ठीक हो जो जो पोषक तत्व का प्रबंधन ठीक हो गयो ना तो दिक्कत कोई ना और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके किसान
0: बिल्कुल
1: भाई।, भाई अगर जब जहाँ जगह पर पानी कोई ना वो जगह जरूरी थोड़ी भाई गरड मचार या ट्रांसप्लांट कराओ डायरेक्ट बुआई भी ठीक है उसको आपने थोड़ा सा इन्वायरमेंट को असर भी जैसे मान लो ग्रीन हाउस गैसेस वो भी कम निकलेगी और उत्पादन जमीन भी
0: बिल्कुल। तो चलो बहुत बढ़िया बात है, या तो अगर नई विधि कोई अपना बुछारी तो उन्हें भी अपना सका छा। मक्का की फसल भी आपने यहाँ किसान भाई खूब मात्रा में ले रहा है और अब चूंकि जैसा कह रहा था कि भाई कुछ अनाज जो अपन खबा में काम में ले रहा था उनको कहीं भी परिवर्तन करवा की सलाह दी जा रही है आजकल कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, तो कहीं उमा मक्का जो वह भी काम में ली जा सके छे और हमारी टेम पर मक्का की अगर कोई बुआई कर रहा है तो उनकी किसी किस्म ले सके अपना किसान भाई?
1: किसान भाई जैसा पहले तो अपना ई एरिया में जैसे मक्का छ ज्वार छ यही करे छ मक्का ज्वार तो अपना खाना में मुख्य फसल छी
0: बिल्कुल छी
1: धीरे धीरे वो मक्का ज्वार सोयाबीन धान ने रिप्लेस करी तो अब वापस रुझान आ रही
0: है
1: क्योंकि पाची वो कहन भाई इतिहास दोहराव छ तो अपन वापस वो मन जा रहे मोटा अनाज की तरफ जैसे ज्वार की भी डिमांड छ मक्का की भी डिमांड छ
0: बिल्कुल
1: तो और जैसे कुछ जगह भाई दूसरी जगह जैसे कुछ एरिया में अपने बूंदी साइड में बाजरो
0: भी कर
1: तो मक्का की जो आजकल बढ़िया बढ़िया किस्म है जिसमें ये प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा रहे
0: बहुत बढ़िया
1: तो वो खाबा में भी स्वादिष्ट भी है और न्यूट्रिटिव भी है
0: जी।
1: तो जैसे है वो जो QPM यानी हाई क्वालिटी प्रोटीन मक्का का नाम सु
0: अच्छा
1: कुछ किस्म से जैसे HQPM 1 HQPM 5 ऐसा कुछ कुछ किस्म से जहाँ ज्यादा प्रोटीन मतलब दूसरे मक्का की अपेक्षा हाईब्रिड मक्का भी आ रही है आजकल तो किसान भाई अगर आप भाई खाबा का हिसाब से भी करे और अगर था ना आपने बेचना है तो हाइब्रिड मक्का को बीज लेर भी बुआई कर सके और उत्पादन भी ठीक है और आपने ये जैसे सोयाबीन धान में डिफरेंस है ना इसकी वजह दूसरी फसल में ये हो जाओ।
0: बहुत बढ़िया बात बताया आपने डॉक्टर साहब। अच्छा सब्जी वाली फसलों में कुछ काम करना हो अपना किसान भाई आगे ताई आबारी टाइम पर तो कसी कसी फसल और कहीं कहीं काम करी जा सके
1: या वो सीजन छे जिमे सारी सब्जी वाली फसल जैसे टमाटर छे मिर्च छे बैंगन छे भिंडी छे तोरई कद्दू खीरा वर्गीय जितनी भी फसल छे यहाँ को यही समय छे उचित बुआई को
0: अच्छा अच्छा
1: ताकि जैसे ये थोड़ा टेम्परेचर भी उपयुक्त छे और जैसे बुआई करते हैं थोड़ा छोटा बारिश होगी तो यहाँ की बारिश में ग्रोथ भी अच्छी होगी
0: जी।
1: और ये सही छे जैसे वहां में यो देख लीजिए भाई आपने घर का लाइक कर रहा था बेचबा के लाइक कर रहा था मार्केट में देखकर जी की डिमांड हो उस हिसाब से फसल को चयन कर किस्म को चयन कर बोली चाहिए
0: बिल्कुल। तो जैसे मान लो कोई ने भिंडिया लगानी चाहिए टमाटर लगाना चाहिए मटर लगाना चाहिए तो कसी कसी किस्म को इच्छा का जो ऐसी जो अच्छी उत्पादन दे
1: तो जैसे पर अपना यहाँ सरकारी संस्था से निकले किस्म भी जैसे मान लो भिंडी के मान लो अरका नामी करी पर बनी क्रांति री ऐसे टमाटर के अरका रक्षक रही हो और का सम्राट
0: जी
1: ऐसा मिर्च की जो पूसा ज्वाला जो बहुत प्रचलित वेरायटी अपना डी
0: जी
1: तो ऐसा बैंगन में जैसे पूसा प्रबल लौंग छ तो ये किस्म जो किसान भाई ताने भाई था को उद्देश्य काई छ एक तो घर के लेकर छ या बाजार के लेकर छ तो उस हिसाब से चयन करी बोनी चाहिए यू ना कोई ने बता दी कि यार तू तो बैंगन लगानो छ तो तू भी लगाओ तो दूसरा का खबा सुना लगानो किसान भाई
0: बिल्कुल
1: खुद को स्व विवेक सु भाई मन मारो उद्देश्य काई छ क्योंकि आपन ना आज खेती ना सिर्फ दूसरा का खबा सुना खुद कोई उद्देश्य फिक्स कर भाई आर्थिक लाभ लेना चाहिए
0: लाभ लेना चाहिए सही बात है। तो अच्छा मसाला फसलों की तरफ भी जा सकते जी किसान भाई अब
1: किसान भाई हूँ जैसे हल्दी अदरक और ये अरबी यहाँ को प्लांटिंग को उचित समय छे।
0: बहुत बढ़िया।
1: अगर ये टाइम भी कर देगा तो यो जो जो बरसात नारी ना ये बीच में अपन बड़े खरपतवार प्रबंधन कर देंगे।

0: अपनी राई गुड़ाई हो जाओगी।
1: हाँ हाँ।
0: तो यो सही समय छे वहां को।
1: चलो अच्छी बात।
0: पर यो छे किसान भाई अगर जहाँ अपन जैसे यहाँ अदरक हो या हल्दी हो या अरबी हो जो भी लगाऊंगा तो उमा उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: यू ना पानी बड़ी रहेगा
1: तो गड़ जाओगा,
0: फिर नुकसान होगा।
1: अच्छा, बागवानी फसलों के बारे में कहें कि वो चाहूंगा उमा भी कुछ काम करना चाहिए
0: भाई। किसान भाई हो जान मान लो जी, किसान भाई ना बगीचो लगाना छो तो उन मई जून में गड्ढा खोद दिया होगा, वो तप गया होगा भाई जो गड्ढा, धुमा ना खाद भी डाल दे होगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो जैसे अब यो सही समय से किसान भाइयों, क्योंकि लू तो खत्म होगी और अगर अब आप देसी खाद डालन बर्बाद को सही समय से किस्म को सही चयन कर जो किसान भाइयों, लाइक आम की भी हो या अपना अमरूद की हो या नींबू की हो या किन्नू की भी हो या अपना जैसे मान लो ये बूंदी साइड में या झालावाड़ की तरफ अनार को भी ठीक छे। तो उ हिसाब से किस्म को उचित ये कर यो पौधारोपण को सही समय छे।
1: अच्छा अच्छा, तो नया बाग लगाया जाता है।
0: और अगर मान लो कोई किसान भाई ने लगा रखे छे बाग लगा रखे छे छोटो छे तो उमा जैसे खरपतवार के लिए मल्चिंग को सही समय छे, यानी कि कूड़ा या कचरो डालर ताकि वो दूसरो खरपतवार ना होगा, फिर वो सिर्फ अपना पौधा पौधा दिखता रहेगा।
1: बहुत बढ़िया बात छे। और जैसे हम आवार जो बरसात को मौसम आवारो छे तो डॉक्टर साहब बरसात का मौसम में कहें कीड़ा काटा की समस्या बढ़ जाओ छे। अब आपने किसान भाई तो अंधेरा उजाला काम करे छे खेत में, तो सलाह का तौर पर कहें बुझाऊगा थोड़ा सो के भाई माने जहाँ तक हो सके वहां तक अंधेरा से मन जबा सु बचे।
0: किसान भाई देखो भाई जैसे आपनो मेन काम छे खेता में जाबा को, तो उस जाति समय एक तो थोड़ा समय को ध्यान रखा ले, हाथ में लकड़ी रखाना चपला की बजाय जूता पहन रही जाओ किसान भाई।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: क्योंकि आप भी वही रास्ता से जा रहे हैं, वही रास्ता में कोई कीड़ो काटो बैठे छे, और अगर रात में जाओ तो किसान भाई यानी बैटरी तो जरूरी छे।
1: साथ में उजाड़ो
0: उजाड़ो जरूरी छे। और आजकल तो बैटरी भी ना सब किसान भाई के पास एंड्रॉइड मोबाइल छे बड़ा बड़ा, उनकी बैटरी जला के
1: काम है ना। तो डॉक्टर साहब सत्यनारायण मीणा जी, आप सह आचार्य सस्य विज्ञान शाखा में कृषि महाविद्यालय कोटा में पदस्थ, आज अपना सब किसान भाइयों के लेख ये पकवाड़े करवाइयों के कृषि कार्य के बारे में इतनी बढ़िया और सटीक जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम किसान भाइयों, राम राम।
1: भाई बनाओ सत्यनारायण मीणा जी ने कितनी सारी बढ़िया बढ़िया बात बताई छे। अगर यहाँ पर अपन ने गौर फरमा लियो तो अबार यो जो पखवाड़ो छे जुलाई माह को प्रथम पखवाड़ो, इमा अपना जो काम छे वो काफी आसान हो जाओगा। चौपाल में हाल टेम छे तो क्यों ना एक अच्छो सो लोकगीत सुन लियो जाओ। तो आओ अपन सब मिलकर सुना चाह शिव कुमारी गोड और सत्या का स्वर में यो अच्छो सो एक लोकगीत।

तो शिव कुमारी गोड़ और सत्या का स्वर में सुनियो आपने यो अच्छो सो लोकगीत। और अब जो चौपाल में थोड़ी घनी टेम बच रही है उमा आपके ताई बताऊं भाई बनाऊ के आपनी जो सरकार छे वह भी आपने बारे में खूब सोचे छे नई नई तरीका की योजना ले रहा हो छे ताकि आपनो भलो हो सके। जनसामान्य के लेख स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी कई योजना अपनो संचालित छे, तो जो ग्रामीण स्वास्थ्य छे वहाँ के लेख भी खूब सारी योजना और तरह तरह का जो मतलब सुविधा दे रखी है सरकार के द्वारा। वहाँ में आप देखा ना अपन आंगनबाड़ी केंद्र चाल रहे थे हर गांव में, वहाँ आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छे। ये जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की पहली कड़ी छे जो गर्भवती महिला शिशुओं और आम ग्रामीण लोगों के तहत सरकारी योजना का लाभ दिलाओ छे। ये सब ऊपर फिर उप स्वास्थ्य केंद्र छे जंग तहत सब सेंटर खांचा भाई बनाओ। ये 3,000 से 5,000 की आबादी वाला ग्रामीण क्षेत्र आगले का एक बुनियादी इकाई छे जहाँ ANM द्वारा प्राथमिक उपचार और टीकाकरण जैसी सुविधा दी जाओ छे। फिर ये सभी ऊपर जो आपने सुविधा मिले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छे जहाँ तक PHC कांचा, ये जो छे 20,000 से 30,000 की आबादी पर एक PHC हो छे जिमें चिकित्सा अधिकारी जिमें डॉक्टर नर्स और पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध हो जाओ छे। फिर इन सभी ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो छे भाई बनाओ जिक ताई CHC कांचा, ये 4 PHC को एक समूह रच जो 80,000 से 1,20,000 की आबादी पर गठित हो छे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सर्जरी और एक्सरे और आपातकालीन प्रसूति सुविधा की उपलब्धता रहे छे। और एक साथ साथ ही टेलीमेडिसिन और जनऔषधि केंद्र भी चल रहे छे जो गांवों तक डॉक्टरों की कमी के तहत दूर करवा के लेकर ई संजीवनी का माध्यम से ऑनलाइन परामर्श भी देव छे। और साथ के साथ ही प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं घर के नजदीक उपलब्ध भी कराओ छे। तो इतनी सारी सुविधा अगर अपना आसपास चल रही है तो आपने जरूर यहाँ को लाभ लेनी चाहिए और थोड़ी सी जानकारी रखना तो अपने तई जरूर लाभ की सुविधा मिलेगी। और अभी के साथ साथ ही चौपाल को टीम यहीं पूरा हो रही है। काल की चौपाल में जो छे चर्चा होगी भाई बनाओ विश्व पशुजन्य रोग दिवस और बीजा का चयन के बारे में, साथ के साथ ही भेंट वार्ता सुनवा मिलेगी वर्षा और उनको विषय रहेगा वर्षा की स्थिति और फसलों को चुनाव जिमें जानकारी देगा डॉक्टर रामकिशन मीणा जी। और जानकारी को क्रम में PM कृषक सम्मान निधि योजना के बारे में भी आपको तई कुछ जानकारी मिल पाओगी। तो आज को कार्यक्रम आपने सुनियो, खाल को भी कार्यक्रम आप जरूर सुन जो, आज का कार्यक्रम के बारे में जो भी प्रतिक्रिया हो वह भी बता जो। अब आज तो यहीं तक चौपाल छे, सरवण भाई के ताई इजाजत दियो, आगे फिर मिलेंगा चाला छा, सभी के ताई राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। बिना वक्त गवाए वाधवा अपनी दो प्लेटून्स के साथ मोर्चे पर रवाना हो गए। सरहदी इलाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों के लिए जानी जाती है, जहां कांटेदार बाड़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियां ज्यादा ही हैं। लिहाजा कहां बंकर हैं, कहां खाई यानी ट्रेंचेस, कहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहां मोर्टार्स, कहां कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन सभी खतरों को चुनौतियां देते, अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी, जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था, कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए, खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हथगोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी

सर चोट जाते हैं वो छूटते नहीं अहंकार से। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से। सर चोट जाते हैं।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिल मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम व शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जांबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।